107 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की छठी तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने को है। मंगल ध्वनि के साथ हमारी प्रथम

आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 102.7 MHz पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कल ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी। परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानकारी करते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। सुबह 6:10 पर आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम चिंतन, 6:15 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का, और 6:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

45 मिनट पर गीत बाहर कार्यक्रम 7:20 का समय रहेगा। श्री रामचरितमानस गान का एपिसोड होगा 388। नमस्कार चूहू, ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे 7:23 से। इसमें चर्चा होगी स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होना जरूरी है और एक और जानकारी ई वाहन आज की आवश्यकता। समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 8:00। 8:15 का समय रहेगा मॉर्निंग न्यूज का। सुगम संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संगम आप सुन पाएंगे 8:30 पर। दिन में 9:00 का समय रहेगा आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में।

दिन में नौबजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे। देश का नौबजकर 15 मिनट का समय रहेगा। कार्यक्रम साहित्य सुगंध का चित्र संसार, किसी एक फिल्म पर की जानकारी पर आधारित फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन में 9:30 पर। दिन में 10 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम का। कार्यक्रमों संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा दिन में 11 बजे। दिन में 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग समय रहेगा दिन में 12 बजे। दिन में 12:30 पर आप सुन पाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। कलाकार होंगे ईश्वर सिंह जांगेड़ और साथी। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे दिन में 1 बजे। दिन में 1:05 का समय रहेगा कार्यक्रम घर आंगन का। इसमें चर्चा होगी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करें विषय पर। मिड डे न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे दिन में 2 बजे। दिन में 2:15 का समय रहेगा दोपहर समाचार का। सोशल मीडिया कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश आपके लिए लेकर आएंगे दिन में 2:30 का। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी समय रहेगा शाम 5 बजे। इसमें चर्चा होगी अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा, इसके अलावा जानकारी नैनो टेक्नोलॉजी पर, एक और जानकारी फिंगरप्रिंट या फेस का लुक साइंस। कार्यक्रमों संबंधी जानकारी कार्यक्रम विवरण में सुनिएगा शाम 5:55 से। शाम 6 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार बुलेटिन। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार बुलेटिन। देशभक्ति फिल्मी गीत आप सुन पाएंगे शाम 6:10 पर। संस्कृत में समाचार बुलेटिन होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:30 पर। जिले की चिट्ठी का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किया जाएगा शाम 6:40 पर। खेती और गृहस्थी ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 7 बजे। इसमें चर्चा होगी कृषि और नवाचार, एक और जानकारी जल बचत के तरीके, इसके अलावा एक और जानकारी होगी कृषि में मूल्य संवर्धन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता आप सुन पाएंगे रात्रि 8 बजे। 8:45 पर सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार। रात 9 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले न्यूज एट 9। राजस्थानी लोक संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। चर्चा का विषय है आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। रात 10 बजे आनंद लीजिएगा शास्त्रीय संगीत का। सुगम संगीत आपके लिए लेकर

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं FM 100.7 MHz पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।

से काम करते हैं और उन काम को करते हुए हमें कई बार तो सफलताएं मिलती है, लेकिन कई बार हम उन काम में असफल भी हो जाते हैं। वहां हमें क्या करना चाहिए? तो उस असफलता को अपने काम का अंत न माने, क्योंकि वहां से ही शुरुआत होती है हमारे सीखने की। सीखने की सबसे बड़ी सीढ़ी है असफलता। ये हमें बताती है कि हमें क्या काम नहीं करना है, हमारी कमियों को

जब जब भी आप असफल हुए हैं, उससे आप सफल होने के तरीकों को सीख सकते हैं। असफलता से आपको ये समझने में मदद भी मिलती है आपकी रणनीति में क्या कमी रह गई और भविष्य में आपको क्या अलग करना चाहिए। अपनी गलतियों को आप पहचान पाते हैं। ये आपके भीतर दबाव झेलने और नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता को विकसित करती है। लचीलापन आपका व्यवहार में इसमें आता है। जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो असफलता हमें नए और बेहतर रचनात्मक रास्ते तलाशने के लिए प्रेरित करती है, नया दृष्टिकोण विकसित करती है। जब आप कभी असफलताओं का विश्लेषण करते हैं तो आपको अपनी छिपी हुई शक्तियों का पता चलता है। ये हार नहीं बल्कि अनुभव का एक ऐसा खजाना है जो आपको समय आने वाले समय में और अधिक साहसी और बुद्धिमान बनाता है। और आप हैं वो सीखने के नए अवसरों को भी इससे तलाश कर सकते हैं। हर चीज़ को बिल्कुल सही करने की इतनी कोशिश करने से दूसरों को ये महसूस होने भी लगता है कि मैं उनसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। यानी असफलता से मैंने यह सीखा है। और अनजाने में ही हम हैं वो कई बार अपने आप को ये

राह दिखाती रहेगी कि हमें इस मार्ग को नहीं चुनना है, इस रास्ते पर नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ से हम हैं ऐसे हुए थे। इसीलिए निरंतरता और अनुशासन में रहते हुए और कड़ी मेहनत करते हुए आप अगर पुनः उठते हैं तो आप है उसी असफलता से सीख सकते हैं। अपने लक्ष्य की स्पष्टता रखेंगे तो असफलता के बाद सफलता में अधिक दूरी नहीं रहेगी, एक दूरी मिट जाएगी, समय का सही प्रबंधन रहेगा और आप उस असफलता से डरेंगे नहीं। अपने सीखने की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखेंगे तो आप अंदर से और अधिक मजबूत

नौसारखी चुनौतियों का आप सामना करें, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। निरंतर अपने आप को अपडेट करते रहें, नई किताबें पढ़ें, विशेषज्ञों से सलाह लें, हमेशा सीखने की

अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह की 6:15 में है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाज में अभी आप गणेश स्तुति सुन रहे थे। कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह की 6:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है।

0: सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी।

चुरू के साथ आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चोरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

शागिर्द फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गाने के साथ ही आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अभी आप गीत बहार कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान लंका कांड से संकलित एपिसोड 388। कलाकार ए हरिहरन और संगीत दिया है सतीश वाडिया ने।

श्री रामचरितमानस गान लंका कांड से संकलित एपिसोड 388 अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30

काम को करने के काबिल है या किस काम को करने के काबिल नहीं, यह आप तभी निश्चित कर पाएंगे जब आपके जो लक्ष्य हैं वो स्पष्ट होंगे और उसका उद्देश्य भी होना चाहिए। जीवन, कैरियर या किसी भी प्रोजेक्ट में स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य का होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यही आपको एक सही दिशा, प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करता है। इसके बिना हमारी स्थिति बिना पतवार की नाव के जैसी हो जाती है जो कहीं नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए जब भी कोई काम करें, कैरियर चुने, तो उसके लिए उद्देश्य और आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। उसकी दिशा और मार्गदर्शन में ये तय करता है कि आपको वास्तव में कहाँ पहुँचना है और आप अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। भटकाव कम होता है जिससे आप अपने जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छा आपको हर दिन बेहतर करने के लिए प्रेरित करती रहती है और आप ये जान सकते हैं कि आपकी सफलता की राह प्रगति सही दिशा में चल रही है या नहीं, ये मूल्यांकन आप स्वयं ही कर सकते हैं। आइए, आपका अंतिम गंतव्य है, बड़ी तस्वीर है जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। आप एक सफल है वो उद्यमी बनना चाह रहे हैं या किसी दूसरे क्षेत्र में अपना काम करने का लक्ष्य आपने रखा है, तो आप उस लक्ष्य की ओर ही कदम बढ़ाइएगा। वे छोटे मापने योग्य और समय सीमा वाले कदम जो आपको आपके अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

की साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हमारे ये लक्ष्य हमें ये निर्धारित करते हैं, हमें बताते हैं कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। उद्देश्य विशिष्ट, मात्रात्मक और समयबद्ध कथन होते हैं जो ये बताते हैं कि हमें क्या, कैसे और कब हासिल करना होता है। तो आप जब भी किसी भी काम का करने का प्रयास करते हैं, किसी प्रयास से प्राप्त की जाने वाली कोई भी वांछित या इच्छित जो वस्तु होती है, उस वस्तु का को प्राप्त करने का जो उद्देश्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से संबंधित होता है, तो आप अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखेंगे तो उस स्पष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसका उद्देश्य होना जरूरी है। जीवन का स्पष्ट लक्ष्य आपको सही दिशा देगा और आपको भटकाव से बचाएगा।

0: की साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा

0: जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कई युग बीते और कई परिवर्तन आए, लेकिन जो समय देखने के लिए आया वो है आज ई वाहन का। आज की आवश्यकता है ई वाहन। बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ईंधन की असमान छूती कीमतों के कारण जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गए हैं। और ये पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा स्वतंत्रता के साथ साथ आपके परिवहन खर्च को भी कम कर सकते हैं। पारंपरिक जो वाहन है उससे निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बनाता है और ई वाहन शून्य उत्सर्जन करते हुए जिससे वायु और ध्वनि प्रदूषण दोनों ही कम होते हैं। पेट्रोल डीजल की तुलना में बिजली काफ़ी सस्ती पड़ती है और इसके अलावा इनमें कम पुर्जे और जो रख रखाव है उसका खर्च भी बहुत ही कम आता है, यानी किफ़ायती परिचालन इससे होता है। और आज जो अपनी ज़रूरत का अधिकांश कच्चा तेल विदेशों से आयात होता है, ई वाहन को अपनाने से देश की जो तेल की निर्भरता है वो भी कम होती चली जाएगी। और भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक वाहन को तेज़ी से बढ़ावा दे रही है और इसका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करने के लिए पूरे देश में व्यापक स्तर पर चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा रहे हैं। और इसमें अपने शहर में चार्जिंग स्टेशन खोजने के लिए ई अमृत पोर्टल का आप उपयोग भी कर सकते हैं। चाहे आपका शहर हो, आपके आसपास का इलाका हो, ई वाहन अपनाकर आप न केवल अपना मासिक बजट सुधार सकते हैं बल्कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए भी एक स्वच्छ और हरित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
3: श्रोता आकाशवाणी चूरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। बात करते हैं, केंद्र सरकार ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ प्रदान किया, जिसके तहत उन्हें आय की परवाह किए बिना प्रतिवर्ष 5 लाख का मुफ्त इलाज मिलता है। और इसमें मुफ्त इलाज की जो सुविधाएं हैं वो सूचीबद्ध अस्पतालों में ही उपलब्ध हो सकती है। तो श्रोताओं, ये था आज का नमस्कार चूरू कार्यक्रम। कार्यक्रम से हमें अनुमति, नमस्कार। अभी आप नमस्कार चूरू कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने

0: के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
3: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत।

0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
1: CBSE बोर्ड ने कहा है कि CBSE.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बात आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मानसून

0: या दो दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Center forms high-level committee to study demographic change caused by infiltration and other reasons. Supreme Court to deliver its verdict today on petitions challenging special intensive revision of electoral rules. CBSE rejects claim circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to Moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 in Home Ministry, will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue.

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

छू गई जब से तेरा आंचल हवा, ये नज्म भी अपने पंकज उदास की आवाज में सुनी। श्रोता इस समय आकाशवाणी चुरू से सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संगम। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल।

0: तू जा रहा है, तो ये नज्म भी आपने सुनी पंकज उदास की आवाज में। सुर संगम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है, सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉ शमिका रवि को सदस्य नियुक्त किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक साल में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस तरह की समिति बनाने की घोषणा की थी।
3: मैं देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0

0: पॉइंट ओ के दूसरे और तीसरे चरण के लिए करीब 688 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की है। इससे जल संरक्षण और भूजल संवर्धन कामों को गति मिलेगी। जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान के दूसरे चरण के लिए इससे पहले भी 300 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल ग्रहण विकास से जुड़े कामों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जाएगा। इस बीच प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम और अन्य जन जागरूकता गतिविधियां हो रही हैं। कल कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, बारा, पाली, हनुमानगढ़ और सवाईमाधोपुर सहित अन्य जिलों में हुए कार्यक्रमों में जल संरक्षण के लिए सामुदायिक सहभागिता का संदेश दिया गया। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP स्थापित करने के लिए 150 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। रीको और नॉन रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक वाले जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वाले प्लांट लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में रिसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का दोबारा उपयोग सीमित हो जाता है। नई योजना के तहत लगने वाले प्लांट से जल का पुनर्उपयोग हो सकेगा। योजना की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लोन अस्पताल में हाल ही में हुई प्रसूताओं की मौत के मामले में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को इसका कारण बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं माना गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि कुछ मीडिया संस्थानों ने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को सीधे तौर पर मौत का कारण बताया है, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कोई निष्कर्ष प्रमाणित नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि औषधि नियंत्रण विभाग ने विभिन्न दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के 37 सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। श्री खेवसर ने बताया कि अब तक मिली रिपोर्ट्स में सभी दवाएं मानक गुणवत्ता वाली पाई गई हैं।
1: ये जो प्रसूताओं की जो डेथ हुई है वो इस इंजेक्शन के कारण नहीं हुई है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन नहीं था। अभी जो है इक्विपमेंट्स की जो है कोलकाता से रिपोर्ट आएगी, हमें मालूम पड़ेगा कि उसके अंदर कोई कमी रही है, और उसको हमारे पास रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी तो हम इसके बारे में बता पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी ये जो प्रसूताओं की डेथ हुई है उसको बहुत गंभीर तरीके से उन्होंने लिया है, और वो पर्सनली इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जांच होके जो एक्चुअल कारण है उसके बारे में हमें मालूम पड़े।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। ये जोन जवाहर नगर में बनाया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने जगह चिन्हित कर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गौरतलब है कि शहर में रेहड़ी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए 27 वेंडिंग जोन चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन जोनों में बिना किसी गारंटी के आसान ऋण और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इससे 5,000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। कल नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि साल 2036 की ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाएगी। डॉ. मांडविया ने बताया कि पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी। 4 से 8 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा।
2: योग के हमारे देश की संस्कृति भी है, हमारी जीवन शैली भी है। आज से सदियों पहले योग भारत से निकल के सारे दुनिया में गया है। फिर से योगासना की फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप करके उसको पुनः भारत में एक बड़ा कार्यक्रम के रूप में आयोजित करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अभी प्रारंभ भारत से कर रहे हैं और सारी दुनिया के अलग अलग कंट्री में उसको भविष्य में करा जाएगा।
0: प्रचंड गर्मी के कारण प्रदेश में कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखा जा रहा है। कल 5 शहरों में दिन का पारा 45 डिग्री से ऊपर रहा। श्रीगंगानगर 47 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। उधर कोटा में रात का तापमान 32 डिग्री से ऊपर मापा गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले कई दिनों से अधिकतर स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है, वहीं कुछ जिलों में पारा 44 से 46 डिग्री के बीच मापा जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं।
3: तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। दिन में

0: सड़कों पर आवाजाही कम दिखाई दे रही है, वहीं रात के समय भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक हीट वेव की स्थिति बने रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: मौसम विभाग के अनुसार कल से नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। इस बीच झुंझुनू में कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद शाम को कुछ देर तेज बारिश हुई। ईद उल अजहा का पर्व कल मनाया जाएगा। ये त्योहार कुर्बानी और त्याग का प्रतीक माना जाता है। हर साल ये पर्व इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिल हज की 10 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के मौके पर ईदगाह और अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज सामूहिक रूप से अदा की जाएगी। इस बीच हज यात्रा 2026 में भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के अराफात मैदान में इकट्ठा हुए। एहराम पहने अकीदतमंदों ने निमरा मस्जिद में एक साथ नमाज अदा की। जायरीन आज कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने की रस्म के लिए मीना पहुंचेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में किसी तरह का सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। बोर्ड ने कहा कि ये मार्किंग प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। राज्य में जल संरक्षण को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियां जारी। प्रदेश का पहला आदर्श स्ट्रीट वेंडिंग जोन जयपुर में बनेगा। रेहड़ी पटरी वालों का कामकाज व्यवस्थित हो सकेगा। और प्रदेश में प्रचंड गर्मी के दौर के बीच कई शहरों में दिन और रात के तापमान के बीच केवल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर देखा जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चुनाव केंद्र है। सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

चंदन है माटी मेरे देश की, समूह स्वरों में ये देश गाना भी आपने सुना। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 107 MHz पर। सुबह के 9:15 हुई हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य सुगंध। इसमें सुनते हैं कवि संतोष कुमार से कविता।

कवि संतोष कुमार से अभी आप गायन सुन रहे थे साहित्य सुगंध कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्र संसार।

गाना है 1983 में बनी सुपरहिट हिंदी फिल्म और सुभाष घई द्वारा निर्देशित निर्मित एक बेहतरीन रोमांटिक एक्शन फिल्म का, जिसमें अभिनेता जेकी श्रॉफ और अभिनेत्री मीनाक्षी सह्याद्री को बॉलीवुड में बड़ी पहचान दिलाई।

गाना है हीरो फिल्म का 1983 में बनी और सुभाष घई ने जिसको निर्देशित किया था। मुख्य कलाकार में जेकी सराफ और मीनाक्षी शशाद्री रहे थे और अन्य कलाकारों में शम्मी कपूर, अम्बरीश पुरी और संजीव कुमार ने भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के लिए

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

हीरो फिल्म एक ऐसे युवक की कहानी है जो एक गैंगस्टर के लिए काम करता है और एक पुलिस कमिश्नर से बदला लेने के लिए कमिश्नर की बेटी का अपहरण

0: टैंजरीन बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
1: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
2: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
2: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।

आप सुन रहे हैं 1983 में बनी हीरो फिल्में लता मंगेशकर और मनहर उदास को। इस फिल्म के लिए संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखा आनंद बख्शी ने।

क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।

0: आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: सोलह दिसंबर 1983 को रिलीज हुई सुभाष घई द्वारा निर्देशित हीरो फिल्म में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी सेशाद्री को एक बॉलीवुड में विशेष पहचान भी मिली। और इस फिल्म के ये जो तू मेरा हीरो फिल्म का ये जो गाना बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था।

सुभाष घई द्वारा निर्मित ये पहली फिल्म थी जिसका संगीत भी बहुत अधिक लोकप्रिय रहा और 2015 में इसी नाम से इस फिल्म का रीमेक बनाया गया निखिल आडवाणी के द्वारा। तो श्रोताओं, आज आप चित्र संसार कार्यक्रम में सुन रहे थे 1983 में बनी हीरो फिल्म की कहानी। गाना था अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में। अब इस कार्यक्रम से हम देवमती नमस्कार। अभी आप चित्र संसार कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है FM 100.7 MHz पर। सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माय गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग।

0: क्या बात है बांसुरी की इस मधुर तान को सुनकर आप, मुझे पूरा यकीन है कि बहुत अभिभूत और वशीभूत हो गए होंगे। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। और विविध भारती, तो हम आकाशवाणी विविध भारती हमारा आज से नहीं, मेरे दादाजी के समय से नाता है
0: जी।
1: मेरे दादाजी भी पंडित शिवनाथ जी, वो शहनाई प्लेयर आकाशवाणी में थे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट, और मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी जो मेरे गुरु भी हैं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, वो पिताजी मेरे एज ए स्टाफ आर्टिस्ट ज्वाइन हुए थे, फिर एज ए फ्लूट प्लेयर बनारस घराने के बांसुरी वादक, फिर उसके बाद उन्होंने ऑर्केस्ट्राइजेशन भी की कई सालों तक, फिर म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक कंडक्टर, और फिर ऑल ओवर इंडिया की यूनियन प्रेसिडेंट भी थे बहुत सालों तक। तो उनके साथ हम जाते थे आकाशवाणी में, और हमें जो बचपन की जो याद थी, जिस समय से हम अपना जीवन शुरू किया है, वो आज मुझे वापस देख के आकाशवाणी का वो जो खुशबू है, और वो जो आकाशवाणी के स्टूडियो की जो एकुस्टिक, वो जो है एक जो नॉस्टैल्जिक फील है ना, वो आज मेरे को वापस देख के बड़े सालों बाद बहुत अच्छा लगा।
0: सो
1: थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट।
0: अपने ही परिवार में वापसी है आपकी एक तरह से,
1: बिल्कुल कह सकते हैं, इट्स अ होम कमिंग बैक।
0: बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक चीज जो है वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपके पिताजी पंडित अमरनाथ जी गायक पंडित अमरनाथ जी से अलग
1: है, बांसुरी वादक
0: जी, बिल्कुल बांसुरी वादक पंडित अमरनाथ जी, जिनका ताल्लुक आकाशवाणी से भी रहा, आकाशवाणी के वाद्य वृंद के लिए उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: जी जी, पिताजी ने तकरीबन 61-62 डिफरेंट रागास पे अपनी वाद्य वृंद की रचनाएं की।
0: क्या बात है।
1: और जो प्योर, जिसमें से बहुत प्रचलित राग भी नहीं थे, जिसमें से कई ऐसे राग थे जिसमें जो बहुत अक्षोभ राग भी हैं, अक्षोभ राग जैसे जो लोग ज़्यादा सुनते नहीं, बजाते नहीं, गाते नहीं, करते नहीं, और बहुत डिफिकल्ट राग भी हैं जैसे बिलास खानी तोड़ी। बिलास खानी तोड़ी राग गाना बजाना ही, उसको उस राग को संभालना ही मुश्किल है
0: जी।
1: और गोरख कल्याण, ये सब राग संभालने ही मुश्किल हैं, मारू विहाग और फिर केदार, ये सब रागों को सिर्फ संभाल लेना ही काफी है,
0: और इन रागों में वाद्यवृंद
1: बनाना वो भी और भी चलन के आधार पे
0: जी।
1: अब सारे गामा पदा नीजा नीदा पमा गरेजा, अब ये जब आप ऑर्केस्ट्राइजेशन करते हैं 80 लोगों के साथ,
0: 80 लोग,
1: हाँ,
0: ये मायने रखता
1: है, 80 आर्टिस्ट, वो भी 80 आर्टिस्ट सिर्फ आर्टिस्ट नहीं है, वो एक एक चुन के हिंदुस्तान के
0: नगीने
1: हैं, जो अपने अपने अपने वाद्य के अपने अपने घरानों के खलीफा, आप समझ लीजिए जिनको, जो अपने घराने के गुरु हैं और गुरु के सुपुत्र हैं, जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको दिल्ली में हम सुनते थे कि जो उनको अपने घरानों का खलीफा बोलते हैं, अपने घरानों का गुरु, महागुरु ऐसा समझ लीजिए। तो वो सब उस रूम में मौजूद हैं और पिताजी की कंपोजिशन वो बजा रहे हैं, और जो नोटेशन जो पिताजी करते थे हिंदुस्तानी नोटेशन, सारे गामा पा धा नी सा और SRGM, सारे
0: गामा पा धा, दोनों नोटेशन करते थे वो
1: पिताजी करते थे, हाँ। सो स्टाफ नोटेशन नहीं लिखते थे वो, हिंदी नोटेशन लिखते थे, बट उसको SRGM में लिखते थे
0: जी जी।
1: सो वो नोटेशन जो जब पिताजी बनाते थे कंपोजिशन, सो मैं और मेरे बड़े भाई पंकज नाथ जी, हम वैसे तीन भाई हैं, मेरे सबसे बड़े भाई हैं श्री पवन कुमार नाथ जी, वो म्यूजिक में नहीं है, और मुझसे बड़े जो हैं श्री पंकज नाथ जी, वो बांसुरी वादक हैं, और मैं उनके बाद सबसे तीसरा छोटा पारसनाथ। तो हम तीन भाई हैं और दो म्यूजिक में हैं, एक म्यूजिक में नहीं है।

0: जी।
1: तो मैं और पंकज नाथ जी हम लोग पिताजी के साथ रात भर बैठ के उनके साथ नोटेशन लिखा करते थे, वो बनाते रहते थे, सुर बनाते रहते थे और कंपोजिशन बनाते रहते थे, तो हम दोनों नोट करते रहते थे, नोटेशन करते रहते थे। तो वहाँ से हम नोटेशन सीखने को भी, एक जो इंडस्ट्री में काम करने के लिए मुंबई इंडस्ट्री में
0: बुनियाद पक्की हुई
1: एक तरीके से बोल लीजिए, वो एक ट्रेनिंग भी थी
0: जी
1: और एक तरीके से काम भी होता रहा।
0: मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतना अनुशासित और सख्त बचपन था, तो उसमें बदमाशी की जगह कितनी थी?
1: वो निकल ही जाता है बचपन में। बचपन ऐसा होता है ना कि थोड़ी सी भी जगह या मौका मिले तो बदमाशी कर ही लेता आदमी।
0: कौन कौन सी बदमाशियां की कुछ याद कीजिए। उसके बाद तो जाहिर है कि बदमाशी के साथ एक चीज साथ में आती है। वो एक कुटुंबस।
1: हाँ, अभी आर्टिस्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि बचपना जो होता है वो अपने आप में ही बदमाश होता है, और प्लस आर्टिस्ट घराने का बच्चा हो
0: जी,
1: तो और भी बदमाश
0: और भी। तो आप क्या कारनामे करते थे?
1: हम लोग करते थे बचपन में।
0: शर्मा रहे बता रहे थे।
1: हाँ, थोड़ा सा शर्मा हो गया, बट हाँ बदमाशी करते थे।
0: बगीचों से आम चुराए, चोरी
1: बहुत चुराए, बहुत चुराए हमने, आम चुराए हैं, और हमने अपने टीचरों को भी बहुत परेशान किया है।
0: ओहो हो,
1: प्रिंसिपल को भी थोड़ा परेशान किया है,
0: थोड़ा।
1: इतना थोड़ा कि उन्होंने
0: घर शिकायत भेज दी।
1: घर शिकायत नहीं, घर वालों को स्कूल ही बुला लिया था।
0: अरे बाप रे। फिर
1: पिताजी आए, उन्होंने, अच्छा एक्चुअली मैं आपको बता दूं,
0: लेकिन किया क्या था आपने ऐसा? कुछ तो खतरनाक वाला किया होगा।
1: आपने मुझे पकड़ लिया रंगे हाथों पकड़ लिया आपने मुझे।
0: जी जी जी।
1: मैं बचपन में भी नहीं पकड़ा था, मुझे तो टीचर ने।
0: अच्छा।
1: इसको कर्मा बोलते।
0: वापस आ गया।
1: मुझे लगता है कोई ना कोई टीचर आया आपके रूम। हाँ, तो बदमाशी की है सर। हाँ, कभी कभी स्कूल से, जैसे कभी होमवर्क नहीं कर पा रहा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको
0: जी,
1: कि मुझसे होमवर्क नहीं हो पाता था।
0: अच्छा।
1: और जिस स्कूल में हम थे, मैं बॉयज स्कूल में था, सो वहाँ के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे
0: जी,
1: बहुत स्ट्रिक्ट थे,
0: और जमाना भी सख्ती का था,
1: बहुत ज्यादा था, और मतलब लिटरली पिटाई पड़ती थी बहुत ज्यादा। सो उस पिटाई से बचने के लिए हमने थोड़ा स्कूल, कभी कभी घर से निकले हैं पर पहुंचे नहीं।
0: कहीं और पहुंच गए।
1: तो ऐसी बदमाशियां रही, फिर खेलने चले गए
0: जी,
1: गेम खेलने चले गए, क्रिकेट खेलने चले गए, तो ये मस्तियां की हैं। और पिताजी को पता नहीं होता था, और ये डर भी होता था उनको अगर पता चल गया
0: तो क्या, तो हाल होता।
1: बाप रे, दुनिया अलग और मैं अलग।
0: कितना सख्त अनुशासन, आप सबसे छोटे थे तो लाड़ भी उतना ही रहा होगा, अनुशासन भी उतना ही।
1: अनुशासन के टाइम पे बिल्कुल लाड नहीं था
0: जी,
1: कोई छोटा बड़ा देखा ही नहीं। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बचपन में मैंने, मेरे भाई ने, हम प्रॉपर नींद सोए नहीं है, मतलब वो इसलिए नहीं सोए हैं, शायद उसकी वजह से ही मैं आज आपके सामने बैठा हूँ
0: जी। ये एक साधना का हिस्सा रहा कि नींद में कटौती होती रही और सीखने का मामला चलता रहा।
1: वो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि वो एक करेक्ट एज है
0: जी
1: अनुशासन में रहने का, जीवन अगर बनता है तो उसी एक करेक्ट एज में, वो भले ही बच्चा प्रैक्टिस भी नहीं कर रहा हो या भले ही बच्चा कुछ नहीं भी कर रहा हो, अगर वो अच्छे माहौल में है ना, तो उसकी मेमोरी और मसल मेमोरी में वो बात जा रही है।
0: क्या प्यारी।

0: अगर उसका माहौल अच्छा है तो भले ही कई चीजें मैंने जब मैं काम करने लगा प्रोफेशनली, बहुत सारी चीजें मैंने तब रियलाइज की कि कुछ चीजें जो मैंने प्रैक्टिस नहीं भी की पर मैं रियाज जब करता था या बजाने जाता था या बजाता था बांसुरी, तो मुझे महसूस हुआ कि ये एक जो बचपन में जो मैंने सिर्फ सुना है उस वजह से एक एडॉप्शन हो गया है, वो उसको ग्रास्पिंग वो मेरे ब्रेन ने मेरे मसल ने कर लिया है उसको, तो वो एक बहुत जरूरी है। तो ऐसा होता था सर कि सुबह के वक्त से मैं आपको बताता हूँ, जैसे सुबह 4-4:30 बजे के वक्त पे हम अपने दादा दादी जी के साथ बड़ा हमें लाड प्यार मिला है। मेरे दादाजी पंडित शिवनाथ जी, लेट पंडित शिवनाथ जी शहनाई प्लेयर भी थे। और अच्छा, मैं आपको दादाजी की बात आई तो ये मैं बता दूं, ये मेरे दादाजी की बांसुरी है।
1: अरे गजब, तो ये कितने साल पुरानी होगी?
0: मेरे दादाजी व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जब वो शांत हुए, उनकी एज थी 104 साल।
1: ओहो, गजब।
0: ही वाज अ मिलिट्री गाय।
1: जी जी।
0: और उन्होंने जो सबसे पहली जॉब थी उनकी वो मिलिट्री में थी, और इंडिया और चाइना की जो वॉर हुई थी
1: 62 वाली,
0: वो पार्ट थे उसके।
1: ओके।
0: इंडिया वो चाइना के वॉर के, और उनको फिर क्योंकि इंजर्ड हो गए थे, उनको स्निच हुआ था, गोलियां लगी थी, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो उस हालत में इंजर्ड नहीं हुए थे कि मतलब आदमी डेथ के उसमें चला जाए, बट ही वॉज इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड।
1: लेकिन वो शहनाई भी बजाते थे?
0: शहनाई छोड़ी नहीं, उन्होंने रियाज नहीं छोड़ा, उन्होंने
1: फौज में होते हुए।
0: हाँ,
1: वाह वाह।
0: शहनाई और इस बांसुरी को बोलते हैं त्रिपुरा बांसुरी।
1: त्रिपुरा बांसुरी
0: जो मेरे दादाजी ही बजाते थे पूरे खानदान में।
1: गजब।
0: सिर्फ दादाजी बजाते थे त्रिपुरा बांसुरी। अच्छा, त्रिपुरा बांसुरी में क्या एक स्पेशलिटी है सर कि इसमें जैसे हम नॉर्मल बांसुरी है
1: जी,
0: हमारी ये नॉर्मल बांसुरी है, यहाँ पे कॉर्ग लगता है माउथ होल के पास।
1: जी बिल्कुल।
0: ये त्रिपुरा बांसुरी में कॉर्ग नहीं होता है, ये पूरी खाली होती है अंदर से।
1: अरे गजब।
0: एक बांस की नली है और उसमें जो सुरों के होल किए हुए हैं। और यहाँ पे जैसे आपने बहुत सारे बांसुरी वादकों को देखा होगा, बहुत आज

0: आजकल जो पीछे पंचम का होल है ये तो हम बचपन से देख रहे हैं अपने बांसुरी अपने घराने के बांसुरी में। हालांकि हम पंचम का होल यूज नहीं करते, हम जो कृष्णा बांसुरी है नॉर्मल वो वैसे ही बजाते हैं
1: जी जी,
0: पंचम हम होल यूज नहीं करते। तो हमने तो अपने बचपन में दादाजी को त्रिपुरा और बांसुरी ये कम से कम नहीं तो 200 साल पुरानी बांसुरी है।
1: क्या बात है, ये तो अद्भुत
0: बांसुरी, उनका आशीर्वाद है
1: जी।
0: मंदिर में रहती थी ये बांसुरी, हमेशा मंदिर में रहती थी। सुबह तो हमारा कैसा था कि दादाजी हमारे मिलिट्री के थे तो उनका अनुशासन शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट था। 4 बजे हम तीनों को उठा देते थे। वो हम तीनों का 4 बजे उठ के, मैक्सिमम 4:30 बजे उठ के सिर्फ एक काम था कि राग भैरव में एक स्थाई गानी है, तीनों को गानी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, उसके पीछे वो उनका सोच ये था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, उस वो जो ब्रह्म मुहूर्त की जो एनर्जी है वो आपको महसूस करनी है, और उस मुहूर्त में जो राग है वो रागों का जो, क्योंकि हमारे जो राग रागनी है ये हमारे देव देवताओं का उत्पन्न किया हुआ है। ये तो साक्षात आजकल जो म्यूजिक जो एंटरटेनमेंट है वो तो पहले पूजा और प्रार्थना के लिए यूज होता था
1: जी जी,
0: सिर्फ और सिर्फ पूजा और प्रार्थना और सिर्फ साधना ही होती थी संगीत के सुर से। तो अभी क्या था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे सिर्फ भैरव राग गवाने का एक ही उद्देश्य था कि वो आशीर्वाद ईश्वर का, वो भैरव राग का आशीर्वाद, सरस्वती माँ का आशीर्वाद उस मुहूर्त में हमें मिले।
1: वाह।
0: तो सा रे गा मा पा नी सा नी ला मा गा रे सा, एक हम बंदिश गाते थे।

0: तो ये बंदिश हम सुबह गाते थे, उसके बाद हम तीनों नींद में गाते थे। अब ये तो हुई दादाजी की सोच, अब तीन बच्चों की सोच बताता हूँ कि हमें ऐसा लगता है क्यों क्यों उठाया जा रहा है 4 बजे सुबह, क्यों नहीं सोने दिया जा रहा है, ये क्या पनिशमेंट है, ये क्या है। क्योंकि नींद इतनी प्यारी होती है ना,
1: बिल्कुल
0: और
1: बचपन
0: वो
1: की
0: चार
1: नींद,
0: साढ़े चार बजे तो एकदम चरम सीमा की नींद होती है।
1: बिल्कुल
0: उस वक्त जगा दिया जाता था। दिल्ली, आई बॉर्न बॉटम इन दिल्ली,
1: जी,
0: तो दिल्ली की सर्दी भी खतरनाक होती थी उस
1: खतरनाक जी।
0: पर वो जगाते थे। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर 5:30 बजे के बाद हमें अलाउड नहीं था कि बेड से उठना ही है और फिर बाहर निकलना है घर से, एंड जस्ट हैव टू गो वॉक, डू व्यायाम, जो प्राणायाम वट एवर। ये मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ सर, जब मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात बता रहा
1: जी
0: हूँ।
1: जी
0: एंड देन वो होने के बाद फिर घर आए, नहाया धोया, नाश्ता किया। 7:30 8 बजे हम लोग रियाज पे बैठ गए। 8 बजे रियाज पे बैठे हैं नाश्ता करके, उसमें दादाजी के साथ भी जब पूजा करते थे दादाजी, तो ये बांसुरी बजाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो पूजा के टाइम पे वो राग दुर्गा में एक स्थाई बजाते थे।
1: अरे।

0: फिर इसके साथ सरगम उन्होंने कुछ कुछ बनाई थी, बताई थी हमें, तो सरगम बजाते थे हम लोग। तो एक हाजिरी होती थी हमारी, पिताजी भी होते थे, दादाजी होते थे, हम दोनों होते थे। उसके बाद फिर दादाजी अपने शेड्यूल में बिजी हो जाते थे, पिताजी जॉब में जाते थे, हम लोग रियाज करते थे दोनों भाई। सो हमारा रियाज होता था तकरीबन 8 बजे से 8:30 बजे से लेके दोपहर को 12:30-1 बजे तक, 5 घंटे का एक टाइम का रियाज। फिर दिन में लंच के बाद 2 घंटे होते थे, उसमें आप कुछ और कीजिए, जैसे कुछ और सीखिए या बगीचे में कुछ कीजिए या कुछ भी घर में कुछ और सेवा कीजिए, घर का कुछ काम कीजिए, वैसा कुछ। फिर 4:30 बजे से 4:30-5 बजे से वापस रियाज, वो रात को चलता था 10-10:30 बजे तक। तो दिन में तकरीबन 11-12-13 घंटे का रियाज होता था। उसी 13 घंटे में पूरे दिन शिष्य आते थे, अपने टाइम से आते थे, जिनको जाना होता था वो चले जाते थे, वो चलता ही रहता था एक रोटेशन में, तो वो माहौल रहता था।
1: वाह वाह।
0: फिर रात को आप समझिए 10:30 बजे अगर हम लोग छोड़ा है रियाज करके दिन भर, आप सोने गए हैं 12 के आसपास, तो पिताजी आए रिकॉर्डिंग से और 1 बजे या कभी 2 बजे उनका कुछ मूड हुआ बताने का, कुछ

0: सोचते हुए आए हैं, बच्चों को बताऊंगा।
1: और बच्चे तो सो रहे हैं,
0: बच्चे सो रहे हैं। अब बच्चे कौन, मैं और मेरे बड़े भाई पंकज जी। अब पिताजी ने हमें कभी बचपन में, मेरी माता ने, पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी मारा नहीं, हाथ नहीं उठाया, पर डर इतना था कि उनके आंखों से और आवाज से डर लगता था। तो ये था कि अब पिताजी आ गए 12-1 बजे, उन्होंने कहा

0: भी पिताजी संडे, क्योंकि आकाशवाणी छुट्टी होती थी, दोस्त सैटरडे संडे पिताजी भी बैठते थे रियाज पे. फिर वो जब पिताजी बैठते थे तो और लंबा डिटेल क्या रियाज होता था दादाजी के साथ भी. तो होते होते फिर वो बचपन पूरा वैसे ही उसी
1: रियाज अनुशासन
0: से, रियाज करते हुए अनुशासन से इसी तरीके से गुजरा है.
1: क्या बात है.
0: मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि इस जीवन में मुझे, मैं जितना ही अपने आप को ग्रैटिट्यूड महसूस करूं यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, या उस सोर्स के लिए जिसने मुझे ये लाइफ दी है, कि मुझे ऐसे परिवार में ऐसे दादा दादी जिन्होंने पूरा बचपन में हमें प्यार भरपूर दिया
1: जी,
0: संगीत दिया जिसके वजह से हमारी ज़िंदगी बनी
1: जी,
0: मेरे माता पिता जिन्होंने कोई कमी महसूस नहीं होने दी और फिर संगीत सिखाया और फिर जीवन को कैसे जीना है उसके बारे में भी नॉलेज दी
1: जी,
0: ऐसे परिवार में मेरी जीवन की शुरुआत हुई. कोई भाग्यशाली मैं अपने आप को बहुत मानता हूँ कि ऐसे घराने का बच्चा हूँ और ऐसे घराने में पैदा हुआ हूँ. और भी बहुत एक बड़ी बात है कि जीवन को जीने के लिए कई बार ऐसा होता है, प्रोफेशन आप पैसा कमाने के लिए चुनते हो जिससे आप पैसा कमाते हो, पर आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है और पैशन आपका कुछ और होता है, पर आप पैशन के लिए काम कर ही नहीं पाते हो.
1: बिल्कुल.
0: जीवन जीने का आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं, तो वो पैशन है आपका, वो कुछ भी हो सकता है, खाना बनाना हो सकता है,
1: बिल्कुल
0: ट्रैवल करना हो सकता है, कुछ भी, मतलब म्यूजिक हो सकता है. और तो मेरा तो पैशन भी यही है, जीवन भी यही है. ऐसा नहीं लगता है ये मेरा साज है, ऐसा लगता है मेरे शरीर का एक अंग है.
1: बिल्कुल.
0: ये और मैं एक ही हैं. सो मैं इस जन्म में आर्टिस्ट बन के पैदा हुआ हूँ और एक सास की सेवा कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान के सास की सेवा कर रहा हूँ जिन्होंने इस सास से पता नहीं कितने लोगों का कितना उद्धार हुआ है. तो मेरे लिए तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है.
1: क्या बात है. पारस जी, हम अब ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो दादाजी वाली बांसुरी है, त्रिपुरा बांसुरी
0: जी,
1: उस पर कोई धुन बजाएं और उसके बाद हम एक फिल्मी गाना सुने आपकी पसंद का.
0: मैं दादाजी की बजाई हुई धुन में आपको सुनाता हूँ
1: जी,
0: पर त्रिपुरा बांसुरी मैंने बजानी, मेरे लिए ये एक बहुत ड्रॉबैक है मेरे लाइफ का
1: जी,
0: कि ये बांसुरी मैं कोशिश की थी मैंने बजानी
1: जी जी,
0: पर दादाजी जब तक उनके दांत थे और वो इस तरीके से होल्ड कर पाते थे
1: जी जी जी,
0: इसको ऐसे बजाते हैं.
1: समझ गया.
0: देखिए, तो एक होती है सीधी बांसुरी,
1: हाँ,
0: आपने देखी होगी ऐसे शहनाई की तरह बजाते हैं
1: जी जी जी.
0: एक होती है ये जो हम बजाते हैं कृष्णा बांसुरी
1: जी,
0: इसको कृष्णा बांसुरी बोलते हैं. तो मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति देखी होगी थी
1: इसको
0: ऐसी, तो इसको बोलते हैं आड़ी बांसुरी.
1: हाँ,
0: आड़ी बांसुरी भी बोलते हैं, कृष्णा बांसुरी भी बोलते हैं, और इसको हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का वाद्य भी बोलते हैं
1: जी.
0: फिर ये हो गए त्रिपुरा बांसुरी, इसको बजाते हैं ऐसे. इसका ये पंचम का होल है
1: जी,
0: और ये बाकी आगे नॉर्मल जैसे बांसुरियों पे होता है
1: उस तरीके,
0: उस तरीके का है. और इसमें एक और खास बात है कि आप देखिए, इसमें जो कृष्णा बांसुरी है इसमें जो एक मध्यम तीव्र मा, जो क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्लूट मेकर्स अपनी नाम बढ़ाने के लिए, बहुत सारे फ्लूटिस्ट अपने नाम बढ़ाने के लिए वो चीजें अपने आप को, क्योंकि अपना नाम आजकल के जीवन में क्या हो गया ना सर, भोगना भोगना ग्रीडीनेस
1: जी जी
0: इतना ज्यादा बढ़ गया है कि झूठ पे झूठ बोलते लोग
1: जी.
0: आप सोचिए, ये मैं 200 साल पुरानी बांसुरी मैं आपको दिखा रहा हूँ
1: जी. बिल्कुल.
0: इसमें दो चीजें दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें एक तो पंचम होल दिखा रहा हूँ.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: और दूसरा एक ये मध्यम तीव्र मध्यम का एक नोट है.
1: बिल्कुल है.
0: ठीक है,
1: आखिर में.
0: ठीक है. अब ये दोनों चीजें बहुत सारे सब बोलते कि ये हमारा है हमारा है हमारा है.
1: ये तो 200 साल पुरानी बांसुरी है,
0: हमने तो बचपन से देखा है
1: जी,
0: हमने कभी बोला ही नहीं ऐसा, क्योंकि हमें उस तरीके से कभी ना, हमने कभी ना देखा, ना कभी पिताजी का कभी वैसा विचार रहा, ना कभी दादाजी का वैसा विचार रहा कि ये हमारा है हमारा है, हमने किया है हमने किया है हमने किया है. पिताजी और दादाजी का सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है हमेशा से, पिताजी का आज भी है, कि ये ईश्वर का दिया हुआ साज है, ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद है, हमारा नहीं है, ईश्वर का है, ईश्वर ने हमें चुना है. तो आपके थ्रू जो अच्छा जितनों का हो सके अगर हो पा रहा है तो वो भी ईश्वर ने आपको चुना उसके लिए.
1: आप माध्यम है.
0: आप अपने आप को मत मत समझिए कि आप भगवान है
1: जी.
0: आप भगवान नहीं है. आप भगवान होते तो आपने अपने लिए कुछ कर लिया होता सबसे पहले. जिन लोगों की वजह से आपका हो रहा है वो आशीर्वाद ईश्वर का दिया हुआ है.

0: बहुत सही।
1: तो हमने तो बचपन से ये देखा है सर। अब ये त्रिपुरा बांसुरी जो है ना, ये दादाजी का ही आशीर्वाद है, मैं ये बांसुरी बजा पाता हूँ, जो भी है मेरे पास उन्हीं का आशीर्वाद है, पर ये बांसुरी में बजा नहीं पाता।
0: कोई बात नहीं, तो आप
1: इसका साउंड क्रिएट नहीं कर पाता
0: जी, तो आप अपनी कृष्णा बांसुरी बजाइए।
1: मैं लाया इसलिए हूँ कि उनका आशीर्वाद हमें, खैर मेरे साथ, मेरे हमेशा साथ रहता है।
0: वाह,
1: हमेशा,
0: क्या प्यारी बात।
1: हाँ, ये मेरे फ्लूट किट में रहता है।
0: जी जी जी।
1: अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, जो तीव्र माँ का ये है
0: जी,
1: अब ये बांसुरी पे तीव्र माँ का यहाँ होल है।
0: हाँ है,
1: है ना
0: जी।
1: इसलिए आप कभी गूगल यूट्यूब में सर्च करेंगे ना, आपको ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दादाजी का।
0: जी जी,
1: पिताजी का भी ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि ना वो सुरों में खोए रहते थे, म्यूजिक में खोए रहने थे, शागिर्दों के साथ रहने वाले लोग थे, संगीत में खोए रहने वाले लोग थे, वो टेक्निकली वो उस चीज को समझ ही नहीं पाए। अब हमें भी जब समझ में आया ना, तो दादाजी हमें छोड़ के, शरीर छोड़ के जा चुका था उनका। अब पिताजी भी अपने एक मिजाज के हैं, तो हम भी उनके, क्योंकि हम बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, शिष्य भी हैं। अब पिताजी कब गुरु से पिता बन जाते हैं, पिता से कब गुरु बन जाते हैं, समझ में नहीं आता है।
0: वो, बिल्कुल सही,
1: वो
0: है।
1: देखना पड़ता है
0: जी।
1: तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने बोला दादाजी के लिए जो हम बजाते थे बचपन में, दादाजी के साथ राग दुर्गा मैं आपको सुनाता हूँ।
0: ठीक है, और उसके बाद एक फिल्मी गाना भी सुनते हैं।
1: मैं फिल्मी गाना भी सुनाऊंगा
0: जी।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
0: अब बताइए गाना कौन सा सुना जाए?
1: मैं आपको एक मेरा बहुत ही पसंदीदा गाना है
0: जी जी,
1: जो कि मैं अक्सर बजाता भी हूँ, वो है पिया तो से नैना लागे रे।
0: क्या बात है, गाइड फिल्म का ये गाना है।
1: बहुत अच्छा गाना है।
0: वाह वाह वाह।
1: और लता जी ने तो
0: कमाल किया,
1: उनको सादर कोटि कोटि प्रणाम है। और इतना अच्छा कंपोज किया है
0: SD बर्मन साहब ने।
1: वाह वाह। तो मैं वो आपको
0: जरूर जरूर स्वागत है।

0: अभी इसमें क्या किया ना मैंने, जैसे मैं इसको थोड़ा फ्यूजन अंदाज से भी बजाता हूँ कभी कभी।
1: जी जी जी।
0: तो इसमें एक छोटी सी थीम ऐड की है मैंने।
1: अच्छा।
0: बहुत ही छोटी सी, अब जैसे ये चल रहा है।

0: अर्जी, आपके बचपन की साधना, बचपन का माहौल, सख्त अनुशासन, ये तमाम बातें हमने यहाँ सुनी और जानी। एक बात जो हमारे सुनने वालों के लिए बहुत जरूरी है जानना, वो है कि किस उम्र में आपको बांसुरी पकड़ा दी गई थी?
1: अच्छा, ये मुझसे सवाल पूछा जाता है, मैं हर बार यही जवाब देता हूँ। जब एक बच्चे को एहसास होने लग जाता है ना
0: जी,
1: कोई सेंस शुरू हो जाता है दुनियादारी का, मुझे लगता है कि उसी एज में मैंने बांसुरी हाथ में ले ली थी
0: जी।
1: एक बच्चा होता है जब सिर्फ रो रहा होता है, सिर्फ एक सोता रहता है,
0: शिशु होता है, जब
1: शिशु होता है वो, तो जब एक बच्चा लड़कपन में आ जाता है
0: जी,
1: तो उस एज में बांसुरी हाथ में आ गई थी।
0: वाह वाह वाह।
1: अब वो कौन सी एज थी, मे बी मैं 2 साल का था, 3 साल का था, या कितने भी, मैं इतना बता मुझे पता है कि मेरी जो पहली परफॉर्मेंस थी, मेरे दादाजी के साथ में गया था और जो स्टेज परफॉर्मेंस थी तो 5 साल की एज में थी।
0: बाप रे, इतनी कम उम्र में परफॉर्मेंस।
1: वही राग दुर्गा ही बजाया था मैंने। उस वक्त क्या था, वो 5 साल की एज में वो जो जितना उन्होंने सिखाया था वो रट के गया था मैं। तो सरगम वगैरह उसी हिसाब से बजाया, तो उस वक्त ऐसा, अभी तो जैसे मैंने आपको एक थोड़ा उपज थोड़ा सा करके दिखाया
0: जी जी जी,
1: उस वक्त वैसा नहीं था। तो वो उन्होंने जैसे जैसे सरगम के साथ,
0: वो उम्र भी बहुत छोटी थी।
1: हाँ, काफी छोटी थी। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है, 5 साल की एज में ही मैंने, दूरदर्शन में एक ये प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, तो 5 साल की एज में मेरा पहला इंटरव्यू है।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ,
0: तो सवालों के जवाब देने की बुद्धि आ गई थी तब तक। गजब,
1: वो ये आशीर्वाद है
0: जी जी जी।
1: वो उन्होंने सवाल भी फिर वैसे ही किए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि सुबह उठ के आप कौन सा नाश्ता करते हैं, हॉर्लिक्स पीते हैं कि क्या
0: उनके सवाल भी जाई
1: जी।
0: तो किस तरह का नाता बाकी तमाम चीजों से जुड़ा, खेलकूद से, सिनेमा से?
1: सिनेमा से इतना नहीं जुड़ा
0: जी
1: उस वक्त। म्यूजिक, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि टीनेज में तो मैं प्रोफेशनली म्यूजिशियन, एज अ म्यूजिशियन दिल्ली में
0: जी
1: काम करने लग गया था, तो फिल्म से उतना था, क्योंकि बचपन से ही टीवी और रेडियो से मतलब सुनने में और करने। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं हमें रेडियो कैसे सुना है, गाने कैसे सुने हैं, मेरी माता जी, मेरी दादी और हमारी बुआ जी, तो हम लोग सब साथ में मिलके होली के टाइम पे, मेरी माता जी और दादी जी, वो गुजिया बनाते थे घर पे, नमक पारे, गुजिया, घर के में मिठाई, तो पहले बाहर से नहीं आता था मैडम।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हालांकि हमारे घर में तो तब त्योहार पे अभी भी बाहर से नहीं आता, वो बच्चे शागिर्द वगैरह जो आते हैं वो लेके आते, बट घर पे ही बनता है ज्यादातर,
0: और वो ठेठ बनारसी,
1: ठेठ बनारसी। तो मेरी दादी माँ और माता जी गुजिया बनाते थे और रात भर का कार्यक्रम रहता था वो।
0: गजब।
1: हाँ, तो उस वक्त रेडियो चलता

0: उस वक्त रेडियो चलता, तो रेडियो में सब पुराने गाने, लता जी के, खयाम साहब के, रफ़ी साहब के, किशोर कुमार जी के, मुकेश जी के, आशा जी के, सब वही उस वक्त जो गाने सुनते रहता था ना मैं, तो अभी जो कुछ कुछ गाने मुझे पुराने याद हैं। अब जैसे रसिक वर्मा
1: जी, जी
0: अब बहुत सारे लोगों को वो गाना ही नहीं पता।
1: हाँ, हाँ, चोरी चोरी फिल्म का।
0: अब वो मैंने कितने सालों से सुना ही नहीं, मैं खुद ने नहीं सुना वो गाना, तब का सुना हुआ है,
1: गजब।
0: तो वो जहन में, वही मैंने कहा ना, बचपन में अगर आपके माहौल अच्छा हो तो आपके मसल मेमोरी में क्या बात चली जाती है ना, आपके मेमोरी में कौन सी बात घुस जाती है और वो फिर कहाँ काम आती है आपको पता नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपको जैसा कि मैं बताऊं कि मैं, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इवेंट्स भी करता हूं, कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करता हूं, वहां बहुत सारे जगहों पे फरमाइश होती है कि ये वाला गाना पुराना गाना है, इस तरीके से आप सुनाइए ये गाना। अब एक वो गाना है मदर इंडिया का गाना है, एक वो
1: हुली आई रे कन्हाई।
0: हाँ, अब वो गाना वैसे आप सुनने जाएंगे तो नहीं सुनने को मिलेगा, पर उस वक्त आकाशवाणी में बजता था
1: जी,
0: तो वैसा था। तो फिर आए दिले नादान,
1: वाह वाह वाह, रजिया सुल्तान।
0: हाँ, रजिया सुल्तान, तो कितना कमाल गाना है वो।
1: बिल्कुल।
0: हो हो हो, तो वैसे ही होते होते फिर वो उस हिसाब से चल पड़ा। तो खैर, फिल्मों से नाता उस वक्त था नहीं वैसा, क्योंकि जुड़ नहीं पाते थे उस वक्त की मूवीज से हम
1: जी,
0: पर दादाजी की वजह से हमने कुछ कुछ फिल्में देखी हैं, जैसे बॉम्बे टू गोवा, पड़ोसन,
1: अरे बाबा,
0: और गुजुटी से नहीं, और भी बहुत सारी पिक्चरें उस वक्त थी। फिर ज़्यादातर यही रियाज रहता था, फिर रिकॉर्डिंग्स प्रोग्राम्स में जाना, और फिर कभी जब खाली टाइम मिलता था तो हम भाइयों को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक।
1: अच्छा,
0: बहुत शौक,
1: क्या बात है।
0: एंड आई वॉज द बेस्ट प्लेयर।
1: अरे वाह,
0: इन द टीम। यस,
1: तो आप बॉलर थे या आप?
0: मैं बॉलर ज्यादा बेहतर था, ऑलराउंडर। अच्छा। ही था ज्यादातर, बट ज्यादा बॉलर वाला काम था मेरा।
1: क्या बात है।
0: हाँ।
1: तो फास्ट बॉलर थे?
0: फास्ट बॉलर, लाइक शोएब अख्तर।
1: वाह वाह वाह वाह, इतना एग्रेसिव, क्या बात है। तो अभी क्रिकेट देखने का वक्त मिल पाता है?
0: अब तो सर सर बस देखते ही हैं ऐसे, बस पोस्टर एडवर्टाइजमेंट में दिख जाता है और कुछ
1: जी। लेकिन घर से विरोध था क्रिकेट खेलने का?
0: विरोध ये था कि जब खेलते थे ना, वो मैं बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम होता है आर्टिस्ट हर चीज में।
1: खेल रहे हैं तो फिर बस,
0: फिर खेल रहे हैं तो फिर इतना खेल रहे हैं कि सुबह 9 बजे से गए, शाम को 8 बजे घर आ रहे हैं,
1: डरते डरते।
0: हाँ, कि मतलब कहाँ है, दिन भर बच्चा है कहाँ, मोबाइल भी नहीं था तब तो।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
0: कोई मैसेज ही नहीं है घर पे कि बच्चा जगा है कहाँ।
1: हाँ।
0: तो ये एक अजीब सी बात थी, मतलब सुबह गए हैं खेलने तो चले ही गए,
1: जुनून के तहत खेल।
0: हाँ, वो फिर खाना पीना भी वहीं बाहर खा रहे हैं, कुछ चल रहा है नाश्ता पानी। और फिर उस वक्त क्या होता था, फिर जैसे आसपास के जो मोहल्लों में जो टीम होती है अलग अलग,
1: जैसे मुकाबले,
0: फॉर एग्जाम्पल वाई ब्लॉक का एक टीम है, जेड ब्लॉक का एक टीम है, तो उनका फिर मुकाबला भी हो रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो भी होता था कि शाम को मैच है, उसकी तैयारी करने के लिए सुबह हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वैसा रहता था, तो दिन भर चला जाता था उस जुनून में। फिर ध्यान नहीं रहता था कि घर पे बताना भी है। पर घर वाले
1: ये भारी भूल बड़ी महंगी पड़ती होगी।
0: हाँ, महंगी पड़ती थी।
1: अच्छा, पढ़ाई और संगीत में संतुलन कैसे बन पाता था?
0: पढ़ाई में मैंने आपको पहले ही इशारा किया था कि ज्यादा सवाल नहीं रखेंगे।
1: अच्छा। ये कोर्स से बाहर का सवाल है,
0: पर आप इशारा शायद समझ के भी आपने मुझे फिर वापस
1: ले आए।
0: आप बार बार मुझे स्कूल ले जाते हो, पता नहीं क्यों।
1: नहीं नहीं, स्कूल से बाहर आ जाते हैं,
0: स्टूडियो चलते ना,
1: स्टूडियो चलते,
0: मजा आता है।
1: आकाशवाणी के गलियारों से जुड़ी यादें बताइए। पिताजी तो स्टाफ आर्टिस्ट थे, तो
0: वहाँ पे
1: उनके साथ जाते होंगे आप स्टूडियो?
0: जी, हम जब जाते थे पिताजी के साथ, मैं दादाजी के साथ भी जाता था अपने। और दादाजी का जो ग्रुप था वो अलग था।
1: अच्छा।
0: हाँ, तो दादाजी क्योंकि रिटायर हो गए थे तब तक।
1: हाँ।
0: जब हम उनके साथ जाते थे तो वो पेंशन के लिए जाते थे
1: जी,
0: दादाजी
1: जी।
0: अपने कुछ ऑफिशियल कुछ पेपर वर्क के लिए जाते थे उस वक्त, तो उनके साथ जाने का एक अलग मजा था, एक अलग फीलिंग थी दादाजी के साथ जाने का। तो फिर पिताजी के साथ भी हम जाते थे, तो पिताजी के साथ तो मतलब काम के लिए ही जाते थे ज्यादातर। दादाजी के साथ कभी दादाजी का रिकॉर्डिंग होता था तो शहनाई का रिकॉर्डिंग होता था उनके साथ पूरा। अभी जो मैंने तानपुर चलाया
1: जी जी,
0: उसमें पेटी वाली सुरपेटी आती थी, तो कभी मैं कभी मेरे भाई हम लोग गए तो वो पेटी वाली सुरपेटी आज भी हमारे घर पे रखी। तो वो सुर जो बैकिंग मिलता था सुर का, वो तानपुरा और वो पेटी वाली सुर का। तो फिर उसके बाद जब पिताजी के साथ जाते थे तो पिताजी कभी कभी अपने

0: साथ, जैसे कभी पिताजी का रिकॉर्डिंग हुआ क्लासिकल किसी बांसुरी पे किसी राग का, तो पिताजी के साथ ऐसे ही सपोर्ट के लिए गए। और आकाशवाणी में ज़्यादातर फिर जब वो वाद्य वृंद की रचना उनकी जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो एक दिन की नहीं होती थी उसमें। अब सपोज कीजिए कि अगर 20 पेज का पूरा है कंपोजिशन है, तो शुरू में हमने 10 पेज किया तो एक दिन 10 पेज हुआ, फिर एक दिन 10 पेज हुआ, फिर अगर कुछ ऐसा हुआ कि वापस करना है तो 4-5 दिन हो जाता था उसमें।
1: बिल्कुल।
0: तो उस वक्त क्या होता था सर कि हम जब जाते थे पिताजी के साथ तो वहाँ जितने भी बड़े जो सीनियर जो दिग्गज कलाकार सब अपने अपने घर के गुरु जो होते थे उनके बीच में बैठ के ना सबकी मजाक में भी जो बातचीत सुन के जो एक मजा तो आता था वो एंटरटेनमेंट अलग है, पर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती थी, दुनियादारी की चीजें समझ आती थी। बातचीत में से ये समझ आता था कि किस बात का कैसे जवाब देना होता था, हाजिर जवाब भी समझ में आती थी
1: जी।
0: और ये सब तो दुनियादारी की चीजें, ये आप घर पे नहीं सीख सकते।
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: ये आपको घर से चौकट से बाहर निकल के ही पता चलता है। पर मुझे और मेरे भैया को बहुत प्यार देते थे सब, क्योंकि हम छोटे छोटे से थे और अपने काम में सिंसियर थे, और नोटेशन सबको प्रोवाइड करना और सबका ख्याल रखना। और हम जाते थे दोनों भाई, सपोज ये हॉल है, अब इस हॉल में चारों तरफ आर्टिस्ट ऐसे बैठे हैं सर्कल लेके, तो हम सबके पैर छूते थे। पिताजी हमारे घर ने, माता पिता ने ये बोला है कि बड़े जो है सब आर्टिस्ट है, सबका आशीर्वाद लो
1: जी।
0: तो पूरे एक हमारा चक्कर
1: लगता है।
0: तो वहां पे फिर वो बोलते थे कि बेटा इतना ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो जो वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने जिनको लगता था कि ये बच्चे इतने अदबदार हैं, इतने प्यारे हैं, तो इनको एक तरीका बता दो। और तो पिताजी तो रोकते नहीं थे, पर उनमें से एक जो बड़े आर्टिस्ट हैं उन्होंने कहा कि बेटा ये पूरा ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप सबको प्रणाम कर दो बीच में खड़े होके और फिर अपनी जगह बैठ जाओ। तो वैसा एक पिताजी के साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता था। फिर रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके साथ निकलते थे तो सब अपनी अपनी चीज़ें बताते थे उनको कि ये पार्ट में ये इस तरीके से अगर ये नोटेशन और क्लियर हो जाए या कुछ और ऐसा हो जाए। तो पिताजी वॉज ऑलवेज सो वेलकमिंग कि ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कंपोजिशन बनाई है तो किसी और का सुनेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही बाखूबी बड़े दिग्गज कलाकार हैं। तो वो अगर कुछ सजेशन उनको ऐसा लगता था कि नहीं इससे और खूबसूरत हो रहा है, ही ऑलवेज यूज टू टेक दिस सजेशन एंड make the changes accordingly and वो हमेशा ही respect करते थे उस gesture का।
1: क्या
0: तो वो एक बड़ा शाम को फिर एक अलग माहौल होता था कि जैसे कभी कभी बैठक होती थी घर पे हमारे या किसी और के घर पे बैठक हो रही है संगीत की, तो वहाँ पे मैं और जब हम दोनों भाई जाते थे तो आप सपोज कीजिए कि एक तरीके की क्लास ही होती थी, एग्जाम ही नहीं होता था वो कि आप कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों के बीच में उस एज में कुछ आपको बजाने के लिए बोला, अब आपको कुछ बजाने के लिए बोला है।
1: हाँ,
0: अब वो क्या है वो आप डिसाइड कीजिए।
1: बिल्कुल।
0: सो आपको अब वो उसमें टेंशन बजाने से ज्यादा फीलिंग से ज्यादा 80% टेंशन होता था कि क्या बजाए गलत ना हो जाए।
1: इतने सारे लोगों
0: के बीच में, तो उनकी वो एनर्जी और वो इम्प्रेशन भी और पर्सनैलिटी की वो विभूति सब बैठे हैं एक रूम में, तो उनके बीच में बैठ के बजा रहे हैं तो एक घबराहट रहती थी। तो वैसा रेगुलरली वैसा ही था बचपन में ज्यादा।
1: गजब, यानी चारों तरफ सिर्फ संगीत संगीत और संगीत
0: था। वही था।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। ये था पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा भाग सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुनेंगे अगले हफ्ते।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूं हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूं विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हां, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।

हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है। आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 11 बजे हैं। नीचे प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में जानिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दिन में 12 बजे हम आपको सुनवाएंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 12:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम होगा माटी के स्वर। आज के कलाकार हैं ईश्वर सिंह जांगिड़।

दिन में 1:05 पर कार्यक्रम होगा घर आंगन। आज की चर्चा का विषय है कम बजट में गृह प्रबंधन। एक और चर्चा होगी मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या करें, साथ ही व्यंजन विधि भी आपको बताई जाएगी। 2:30 पर श्रोता आज सुनेंगे फेसबुक कमेंट्स पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। इस कार्यक्रम के लिए श्रोताओं, हमारे आज के कार्यक्रम की पोस्ट दिन में 2:25 पर पब्लिश की जाएगी। उसमें आप कमेंट करके अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। कमेंट में आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी पसंद का गीत लिखकर भेजना है।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम के साथ। आज युवा साथी सुनेंगे चर्चा स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष में बढ़ता कचरा, इस विषय पर चर्चा। साथ ही नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर भी बातचीत होगी। फिंगरप्रिंट और फेस्ट लॉक का साइंस, इस विषय पर भी जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। खेती और गृहस्थी कार्यक्रम होगा शाम 7 बजे, चर्चा होगी कृषि और नवाचार, जल बचत के तरीके तथा कृषि में मूल्य संवर्धन। कार्यक्रम में बाजार भाव, MSP, मौसम की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। रात 8 बजे सुनवाएंगे आपको फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। रात 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। 9:30 पर दिल्ली केंद्र से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। 10 बजे शास्त्रीय संगीत का

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अनादा पोडवाल और मनहर उदास की आवाज में श्रोता सुन रही थी सड़क फिल्म का गाना। सुनिए अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाज में सनम फिल्म का गीत।

आप सुन रही थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम सरगम। श्रोता सुन रही हैं आकाशवाणी के छुरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: आप सुन रहे थे सौदागर फिल्म का ये गीत सुरेश वाडेकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज़।

0: story, but everybody will sing with me.
1: Okay.

एस जानकी और मोहम्मद अजीज की आवाज़ में श्रोता सुन रही थी आखिरी रास्ता फिल्म का गाना। चित्रपट संगीत में नीचे आप सुनिए भ्रष्टाचार फिल्म का एक गीत सुरेश वाडिकर के साथ अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में।

आप सुन रहे थे मनहर उदास और अनुराधा पोडवाल की आवाज में अमृत का गाना। चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। डीजे पर प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुझाव भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे

0: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
0: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस

0: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है
0: जी।
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
0: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारी यूरोप में फैल गया। तो अजीत

0: रहा है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।

0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए।

0: और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं, तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है, तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं, तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ, तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
0: मश्क।
2: होशियार,
0: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
0: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय, और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाने ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान

शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था।

0: कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया। कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
2: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
3: क्या बात कही है?
2: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था।

लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान

0: जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
2: संभल कर
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी, साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नहीं नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी, साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं,

और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं भी सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। जब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी खेस पर। आज के कलाकार हैं ईश्वर सिंह जांगिड़।

श्रोता अभी सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे ईश्वर सिंह जांगीड और उनके साथियों को। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर यानी मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को संवैधानिक और वैध बताया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तय करने का अधिकार है। एसआईआर प्रक्रिया से ही स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया के साथ मतदाता सूचियों की सत्यनिष्ठा, सटीकता और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे इस कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शिरकत कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उप मुख्यमंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा भी समारोह में मौजूद है। विश्वविद्यालय की कुलगुरु निष्ठा जसवाल ने बताया कि समारोह में 9 स्वर्ण पदक सहित 25,000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की जा रही हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक सीबीआई 13 आरोपियों को पकड़ चुकी है। वहीं 49 जगहों पर ली गई तलाशी में कई दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। गौरतलब है कि 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। अब ये परीक्षा 21 जून को फिर से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे खुद को हाइड्रेटेड रखें और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने संवेदनशीलता बरतते हुए लोगों को पानी पिलाने का पुण्य कार्य करने का आग्रह किया है। साथ ही जानवरों और पक्षियों का ध्यान रखते हुए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी का बर्तन रखने को कहा है। राज्य में जारी प्रचंड गर्मी के दौर के बीच आज राज्य के 5 जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। बीकानेर और कोटा संभाग तथा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 46 डिग्री से ऊपर दर्ज होने की संभावना है। वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में आज और कल दिन का पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। इस बीच नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से झुंझुनू और सीकर में मौसम बदला। कल दिन भर तेज गर्मी और उमस के बाद हल्की बरसात हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने कल से 30 मई तक राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

मैडम आज रो घर आंगन कार्यक्रम ले रहा जी रो मैं धारी सखी सहेली नीलम तो ई भगत रेडियो सुन बहारी सारी श्रोता घना को कार्यक्रम माई करो घणो घणो स्वागत और तरु मोगली मोगली राम राम। और भेणो के हाल चाल है थारा? गर्मी तो भेणो देखो आ दिना में बहुत तेज पड़ रही है और ये गर्मी का मौसम में अपने देखो जो भेण काम का जी है बने बारे भी जानो पड़े तो जब आप बारे जावा तो देखो अपने सिर न ढकर जावा पानी की व्यवस्था अपने साथ कर चला। और इके साथ ही भेणो अपने आई कार्यक्रम में देखो चौकी चौकी बदलाव तो करेगा इके साथ ही मीठा मीठा लोकगीत सुनाकर कर सिया थाने थारो मनोरंजन और इके साथ ही अपा और नई नई जानकारी की भी चर्चा कर सिया और सबसे पहली शुरू कराई मीठो सो लोकगीत।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
2: बहनों, आपने बात करा तो देखो, एक महिला जो है वह घर की धुरी हो, हर एक काम की जिम्मेदारी देखो बिकी हो है। चाहे टावरा की बात करा या अपने घर में जो बड़ा सदस्य वहाँ के काम की बात करा या अपने घर में जो भी सदस्य काम से बाहर जा रहे हैं, वहाँ के सुबह जिया खाने पीने की व्यवस्था करनी है, कोई टिप्पण देना है, ऐसे सब काम की एक महिला नहीं करना पड़े। और ये भाग दौड़ भरी जीवन में वह

भी काम करे तो बिके दौरान वे कैस कहा मानसिक तनाव से ग्रसित होने लग जावे। और मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए भेणो अपने अपनी

पास अब जाना, हाँ कि ताजा फल है, सब्जियां हैं, दूध दही है, ये सब शामिल हुए। और अब आज जो गर्मी की बात करा भेड़ो, तो गर्मी का मौसम है तो अपने खाने पीने को विशेष ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरी भी हुआ। और इसके साथ ही भेड़ो, हमेशा अपने एक तो खुश रहना चाहिए, अपन अपने परिवार के साथ है समय बिताना चाहिए। अपनी आज की अगर बात करा भेड़ो, तो हर एक बहन का हाथ में मोबाइल हुआ है, और वह जो मोबाइल में लाग जावे तो देखो बांगा काम भी जो है टाइम पे कुनी हुआ है, और वह आपका परिवार ने भी टाइम कौन दे सके। तो आप मोबाइल से थोड़ी दूरी बनावा। अब आज जो छुट्टियां की भेड़ो बात करा, तो छुट्टियां में जिया आप खुद भी पीर जावा, हाँ अपनी ननदा भी आवे, बांका टाबर भी आवे, तो बांके सागर बैठा, और टाबरा ने भी आप आई कवा कभी आपका बुआ का मामा का बेटा बेटी जो है बांका सागर खेल ले, नाना नानी कन बैठे, बांका सागर समय बितावे, नाना नानी या दादा दादी कन जो बारह बच्चा रह रहे आयडा हुआ तो बांका बैठे और बांका जो अनुभव है पहचान है। तो इशू एक तो कि है अपना जो घर में बड़ा सदस्य है बांको भी टाइम पास हो जाए, और जो बच्चा है वह भी देखो बांकन बैठेगा तो कुछ ना कुछ जरूर अच्छी बताएं सीखेगा। एक साथ ही बहनों, अपा सोने से पहली कैसका एक घंटा पहले जो मोबाइल है वो बंद कर देवा, और अगर कई बहना जो टीवी पे सीरियल देख रही है वो भी अपने सोने से पहले टीवी बंद कर देना चाहिए, ताकि अपने अच्छे से नींद आ सके, अपनो मन जो है बहनों शांत रह सके। और फिर बात करा बहनों, प्रकृति के बीच में अपने टाइम भी बिताना चाहिए। आप बहनों जो सुबह सुबह घूम जावा, तो आप जब हरियाली के बीच में जावा देखो अपने कितना अच्छा लगे, ठंडी ठंडी हवा आवे तो भाभी के दौरान अपने बहुत ही अच्छी लगे। तो अपने कम से कम 20-25 मिनट जो है रोज की खुली हवा में बिताना चाहिए, हरियाली के बीच में अपने थोड़ा टाइम पास जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ही भेड़ो, अपनी जो सोच है बिना सकारात्मक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई भेड़ा जो है तैयारी कर रही है या अपना घर का टाबर पढ़ रहा है, और जब वह कोई बने जद कोई भी परीक्षा में जब वह सफल नहीं हुए, असफलता बने मिले तो वह बहुत ज्यादा निराश हो जाए। तो बने देखो आप समझावा, और खुद भी अगर कोई चीज की तैयारी कर रही हाँ पेपर दे रही हाँ, कोई कारण से अपना मान लो कोई कम नंबर आ गया है, तो आप निराश नहीं हुआ, आप अपनी कठा की गलती रही है के कारण से आप असफल हो यहाँ, एक ही आप जो अच्छे से जानकारी खोजा कभी के कारण आप आए। कई बार अपने परिवार में यहाँ लेके काम भी यहाँ ले घटना घट जावे कि परीक्षा के दौरान आप तैयारी कौन कर सका, तो वो भी एक कारण हो सके। या फिर कोई हरी बीमारी हो जाए खुद का, तो भी आप अभी के दौरान जी परीक्षा का टाइम ही बाद हो जाए तो आप देखो ढंग से पढ़ कौन सका, पेपर कौन दे सका, तो फिर असफलता अपने हाथ लग जाए। तो ये सब कारण जानने के बाद में आप दोबारा से जब आपने मौका मिले तो अच्छे से तैयारी करा। अपना टब्बर है वह भी तैयारी अगर कर रहे हैं तो बने भी आप जो है वहां मनोबल बढ़ावा, बने बतावा कि ई बार असफल हो गए तो अगली बार तू अच्छे से तैयारी करेगा, अच्छे से पेपर देगा, तने सफलता जरूर मिलेगी। वह निराश हुआ तो मन निराश नहीं होने देवा, बाको एक दो बार बस आप बात करांगा तो देखो अभी को मन जो है टाबरा को दूसरी बातों की तरफ चले जाओगे, तो वो देखो निराशावादी कौन बनाओ, बिकी सोच भी आप सकारात्मक बनावा। बिना कई जो उदाहरण है वह देवा कभी देख वो आदमी बीती बार सफल हुआ फिर बिना सफलता मिली, इस तरह का जो प्रेरकदायक जो कहानियां है वह मन बता करके प्रेरित करा, ताकि वह आपके जीवन में निराश नहीं हुआ, उन्हें अच्छे से तैयारी करे और सफलता प्राप्त करें। और योग जो है बहनों वो कैसका अपने तनाव ने कैसे बहुत जल्दी खत्म करें, और योग से अपनी याददाश्त भी बढ़ेगी। योग व्यायाम करा, सुबह सुबह घूम जावा तो अपनो मन खुश रहोगे, और अपनो जो पूरा दिन है बहनों वो कैसका अच्छे से व्यतीत होगो, आप ऊर्जावान बने रही रहेगा। तो बहनों आप एक साथ ही खाने पीने की जी बात करा, तो अपने टावरा ने भी ताजा फल और जो ताजी हरी सब्जियां हैं बे जरूर बना खाने देवा। अब आजकल का टाबर है बनो हरी सब्जी खाना ही कौन चाहे, तो कोई भी आप जब सब्जी बनावा तो बन थोड़ी बांगो जिया स्वाद बढ़ा करके बना देवा, और अगर कोई बच्चा जिया कदे में छा कौन पीवा तो बन जिया दही को रायतो बना देवा, और दूध भी आप अपने टावरा ने जरूर देवा और खुद भी जरूर लेवा, ताकि आप स्वस्थ रह सकांगा। और बहनों जब मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहांगा, यदि आपने जीवन में अपनी सोच जो है वह भी सकारात्मक बनेगी, और जीवन में हर एक सफलता जो है आप प्राप्त कर सकांगा। बहनों बतलाऊं तो अपनी यूं जारी रहेगी, पर पहली सुनाए मीठो सब लोकगीत।

बहनों, आज अगर अपा बात करा तो देखो महंगाई को दौर है और अबार की बात करा तो कोई भी चीज आपा लेके आवा जद आपा अपनो बजट बना चलना भी थोड़ा सा रुपया अपना ज्यादा ही लगे। तो आपा एक तो सबसे पहले तो आपने जो महीने में जद सबसे पहले सैलरी अपना हाथ में आवे तो आपा लिस्ट बनाई डी रखा कभी कौन सो चीज अपने लेनी जरूरी है, तो इससे कि आप फिजूल खर्चे से बच सकेगा। लिस्ट बनाई डी होगी तो देखो सबसे पहले अपने घर को जो राशन को सामान है वो देखो अपन लेना जरूरी है, वो भी ज्यादा नहीं लेवा, जितो अपने जरूरत है वितो ही लेवा। कई बार क्या है आप यार बहुत सारा जो है मसाला की बात करा वह बना लेवा, बहुत सारा अनाज एक साथ ले के रख दिया फिर वो खराब हो जावे। जब अपने मन में पछतावो हो कि इन्हों तो आप थोड़ा पहले कमी लिया था वो अपने अब बेवजह देखो खराब हो गया, अब गिराना पड़ सी। फिर आपने बात करा टाबरा की तो टाबरा की पढ़ाई पर आपने खर्च करना जरूरी है तो भी पापा खर्च करा। एक बाद में आपने बिजली को बिल है और आपने जो जरूरी सामान घर लेना है बाकी खर्चा की लिस्ट आपा बनाई डी रखा, जगह जरूरी खर्चा है वह पहली करा। बीक बाद में जब अपनी बचत हुआ फिर आपा सोचा कि आपने कौन सो काम करना, कौन सी चीज घर में लेनी जरूरी है, कौन सी चीज पे आपने पहली रुपया खर्च करने की जरूरी पड़ेगी तो भी चीज में आपा अपना रुपया लगावा। कुछ भी चीज खरीदने से बहनों पहली आपा दो बार सोच लेवा, कई बार आपा जी देखा देखी भी देख लेवा कह भी बा बहना चीज लेके आई है तो मैं भी लेके आऊं, और बाप ने देखो कई बार कोई काम भी को नहीं आवे फिर आपा सोचा कह ई चीज में तो आपा देख इतना रुपया नहीं लगाना चाहिए, तो अपन बाद में पछतावो हुआ इससे पहली आपा पहली सोच लेवा कि जी चीज की जरूरत है बाई लेवा। और अपना जो बहनों अपनी बचत जो है आपा बैंक खाता में जमा करवाती रहा। और अब जिया घर की अगर बहनों बात करा छोटे मोटे बचत की तो घर में जिया ऊर्जा का जो संसाधन है मान लियो बिजली की बात करें तो अपा जद बाहर जिया गर्मी पड़ रही है पंखो कूलर सब चल रहा है और फिर आप जब बाहर जावा तो वह देखो बेवजह चलता रहे, तो अपना टाबर है जो अंदर बैठा हुआ है बाहर आ जावे चाहे वह 15-20 मिनट के लिए आओ, कई बार जो बच्चा है बाहर अगर कोई बात में लग जाए खेलने लग जाए तो वह बेवजह ही जो है अपना बिजली को बिल बनते रहे, तो आप तुरंत अगर बाहर आ रहे हैं तो टाबरा ने भी यही बात बताओ और खुद भी ये बात ना आप सोच के चलना कभी आप जब भी बाहर जाऊंगा और अपन जब जरूरत नहीं है तो भी कमरे की बिजली पंखो कूलर एसी जो भी चल रहे है बने स्विच मा का बंद कर देवा, इससे बहनों बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने जो बिजली को बिल है भी पे आप अगर करके देखांगा तो अपन खुद ने बाद में पता चल लगो भी आप इतनी महीने में जो है इतनी बिजली की बचत आप जो है बिजली को बिल जो है कम आयो है आप बिजली कम खपाई हाँ। एक बाद में बात करा आप बहनों गैस की, तो आप गैस पे जब बहनों खानो बनावा तो कई बार की है आप जो सब्जी छूक रही हाँ कढ़ाई टोपियो चढ़ा दे फिर देखा कह ले भी तेल है डब्बे में तेल को नहीं है पेय में मसाला को नहीं है, फिर आप जल्दी से बेलियावा करा इतना आप गैस देखो चालू रहे बा बेवजह गैस जली, तो इकली आप जब भी खानो बनाओ तो आप पूरी जो है तैयारी करने के बाद ही आप गैस ने जलावा। और एक बात भी बनो कई बार आपने जो गैस की पाइप है वह भी लिखी ज्योति रवे तो वह भी आप ध्यान देवा और टाइम टाइम पे कैसा भी साल में 1-2 साल बाद में आप अपने गैस को पाइप जो है वो चेक कर लेवा कटे लिखी जो है तो वो बदला लेवा। और पानी की जी आप बात करी ही कि पानी की भी आपने बचत करनी चाहिए, ऐ छोटी छोटी बचत ही बहनों आप जब करा तो बहुत बड़ी बचत जो है आप अपने घर में कर सका। और अपना जो टब्बर है बहनों बन में भी बचत की आदत आप जरूर डालना, जब छोटा टब्बर हो 3-4 साल का जब से ही बना अगर आप रुपया देवा तो वह क्या फटाफट कोई चीज ले आके खा ले वह रुपया तो

में ये हमारा खर्च हो गया, नहीं बने एक गुल्लक ले आके देवा और दो तीन जगह घर में टाबर हो बहनों अलग अलग गुल्लक ले आके देवांगा तो बामे भी देखो बचत की आदत जो है शुरू से ही पड़ जाएगी। और फिर बाकी जो कोई जरूरत की चीज जो है बाबा ले आके देवा खुश भी होगा और बामे होड भी हो जाओ बहनों कई बार कभी वो टाबर का होगा नहीं मैं तो मेरे गुल्लक में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया वो कसी में इतना कर लिया। तो एक तो कि बामे अच्छी आदत शुरू से ही पड़ जाएगी और बचत अगर करेगा तो वह देखो जीवन में आदत बाकी बचत करने की पड़ जाएगी तो वह सफल भी जीवन में जरूर होगा। बेवजह खर्च जो है वह भी को नहीं करेगा। और एक साथ ही भोजन की जो है बहनों बिकी अगर बात करें तो वो भी आपने कई बार की आप मान लो दाल है आपने बच गई तो बिना देखो आप दोबारा काम ले सका दाल ना आटा मोशन के आप परांठा बना ले दही के साथ खा सका यही अपना मान लो कोई कढ़ाई की पूड़ी कई बार आप बनावा तो वह भी बच जावे तो बने भी आप जी हाँ सुखा करके खा सका बिना दही छावे बे के भी खा सका। और नहीं तो वहां को जो बहनों दोबारा बने थोड़ी सी गर्म करके अगर चूरमो भी बनावा तो वहां को चूरमो भी बहुत स्वाद बनेगो। तो ये तरीके से कई बार जो आपने चीज अगर ज्यादा पहले तो आप आई कोशिश करा कि आप ज्यादा चीज बनावा ही नहीं फिर भी कदे बच जावे तो बने भी आप जो है वापिस खाने में काम में ले सका। और अबार की बहनों बात करा तो बाद अगर रात की रोटी भी बच रही है तो बीते भी देखो राबड़ी है दही है छा में भिगो देवा और भी मैं जिया जीरो नमक पौधिनों सुखेड़ो आप जी राख रखे वो सब डाल करके खावा तो इससे कि अपनी सेहत भी अच्छी रहसी और सुबह सुबह को कलेओ जो है बहनों वो भी आपने लिए हिसाब से बहुत अच्छो तैयार कर सका। और टाबरन भी बजे सी बन ऐ सब चीज मसाला और डाल के देवांगा देखो टाबर भी चाव छू खासी और बांको काल जो भी देखो वह सुबह जब अच्छी तरह अंधाप कलेओ कर ले सी तो बन कई देर भूख भी कौन लाग सी और कैसका एनर्जी भी बने पूरे दिन मिलेड़ी रहसी बतलाओ तो बहनों आपने यू ही जारी रहेगी। फिर सुनाए मिठो सो लोकगीत।

भेणो गर्मी है और गर्मी का मौसम है भेणो, पुदीनो जो है वो आपने लिए कैस का एक वरदान का रूप में अपन मिलेड़ो है। और जी की तासीर जो है भेणो बहुत ही ज्यादा ठंडी हुए और वो आपने शरीर ने ठंडो रखे, अपनी पाचन क्रिया ने भी देखो वो दुरुस्त रखे और लू से भी आपने बचावे है। और भेणो पुदीनो आसानी से लाग भी जावे, पुदीनो अगर आपने घरे कच्ची जगह है तो बैठा पांच या एक दो जड़ लाके पुदीने की आस पड़ोस में लाग दिए लाके लगा देवा और भी मैं आपा रोजिया पानी देता रहा तो थोड़ी से दिना में कैसका पौधी

जो है चारों तरफ वो चारों बढ़ जाओगे, और जिया जिया पत्तियां तोड़ांगा बिया बिया पत्तियां और आती रहेगी। और अगर जगह नहीं है भेणो तीन आप गमले में भी उगा सका हाँ, और जब चाहवा आप ताजी पत्तियां तोड़ करके पुदीने की अच्छे से धो करके आप इको कसका हाँ ठंडो शरबत भी बना सका हाँ, और चाहवा तो इकी चटनी भी बना सका हाँ, और कोई सब्जी में भी आप इन्हें डाल के खा सका हाँ। इसे के बनो पुदीनों कसका गुणा से भरपूर हो है, इसे आपने पेट की गैस एसिडिटी और कई बार अपनी त्वचा पर जलन और हो जावे, मुंह में अगर बदबू आती हो तो वो भी पुदीना खाने से दूर हो जाएगी। और पुदीनों देखो अपने खाने के स्वाद ने तो बढ़ावा ही है, इसके साथ साथ पुदीनों जो है एक ही तासीर ठंडी होने के कारण आप गर्मियों में एक पीवा तो इसे आपने जिया जी घबराणो या उल्टी आने की कोई की समस्या हुए भेणा के तो बाबी इशू दूर हो जैसे, और इससे भेणो भूख भी बहुत अच्छी लगेगी। और चटनी की भेणो बात करें तो चटनी में अगर जिया बार केरी भी आ रही है तो मैं केरी मिला करके एक ही अच्छी चटनी आप बना सका, चाहवा तो पुदीने की चटनी में थोड़ी धनिया की पत्ती भी मिला सका हाँ, तो इसे भी को स्वाद बढ़ जैसे। और कैसा अपने शरीर ने ताकत प्रदान करने को और ताजगी अपने शरीर में बढ़ाने को काम जो है पुदीनों करे है, और आपने वजन ने भी भेणो यो कंट्रोल करे है। और पुदीना को अब जी भेण पुदीनों अपने घर जे ताजा लगेड़ो है तो आप थोड़ी सी पत्तियां तोड़ करके एक ही सुबह ही रख देवा, और एयर टाइट डब्बे में आप फ्रिज में रख देवा पुदीने की पत्तियां, तो देखो एक दो दिन में खराब भी कोनी हुए। और कई भेणा का मान लो जगह भी कोनी गमलो भी कोनी तो वह बाजारों पुदीनों आसानी से अपने ई रुत में मिल जावे, तो आप पुदीने की पत्तियां जो है तुरंत ला करके घर जिया ले आया तो एक दो घंटा के अंदर ही पत्तियां भी छोट लेवा, नहीं तो अबार गर्मी को टाइम में भेणो वह पत्तियां सूख जावे तो भी बाद में वह जो है ताजी कौन रहेगी और बाकी आप शरबत कौन नहीं बना सकेंगा। और अगर आपने सुखानी है तो एक एक जिया अच्छा सभी ने धो करके एक एक टहनी ने आप कोई सूती कपड़ा पे फैला देवा, और सूखने के बाद में भी का डंटल जो है बना हटा देवा, और इन्हें जो है एक पाउडर सो बना करके एयर टाइट डब्बे में रख देवा, वो आप छाछ में रायते में जो है मिला करके इन्हें काम में ले सका। और अब भेणो की सिकंजी की भेणो बात करा तो आप मान लो दो गिलास सिकंजी आपने बनानी है तो 15-20 पत्तियां हैं बने धो करके अच्छे से सील लुडो हुए तो भी पे पिसा तो भी की तो बात ही अलग हो भेणो, और अगर सील लुडो आप काम में नहीं लेवा तो आप जो आज के टाइम में हर एक बहन मिक्सी जरूर काम में लेवे, तो मिक्सी में 15-20 पत्तियां डाल करके और आधो गिलास पानी डाल करके भी ने पीस लेवा। और चीनी अगर अपना गनबूरा चीनी है तो आप बस सिकंजी में काम ले सका, नहीं तो एक अंदर अपन अगर फटाफट बनानो है इको पुदीना को शरबत तो भी वहाँ पर चीनी भी डाल देवा पीस जाएगी बिना छान लेवा, और छानने के बाद में भी मैं जो और पानी अपन ने मिलाना है वो मिला लेवा, और नींबू निचो लेवा और एक साथ ही कालो नमक सिंधो नमक काली मिर्च डाल करके ठंडो ठंडो पीवा तो अपने स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा रहेगा बहन। और कई बार अचानक कोई मेहमान आ जाए तो बिके दौरान भी आपने नींबू जो है पुदीनो देखो आप घर में रखा तो बने तुरंत ठंडो प्या सका हाँ। इस हिसाब से बहनों अगर आप घर में जल्दबाजी में अपना कोई काम करना हुआ तो नींबू और पिसड़ी चीनी जो है जरूर आप घर रखा तुरंत आप सिकंजी बना सका हाँ, पुदीने की पत्तियां हो तो वह भी मैं डाल देवा तो और भी को स्वाद बढ़ जैसे। बहनों बात तो आप और भी करेंगे पर पहले सुन ले मीठो सो लोक गीत।

0: करने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को

0: सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम

0: रुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा

0: दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
1: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
0: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
0: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये चूरू केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। आज है महीने का चौथा बुधवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, पहली पसंद हमें मिल गई है, यानी पहला कमेंट हमारे फेसबुक पेज पर हमारे जिन श्रोताओं का मिला है उनके नाम सबसे पहले हम पढ़ देते हैं। आप श्रोता हैं भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमेरी कला झुंझुनू से, महेश जानू बहादुरवास जिला झुंझुनू से, ये हमारे श्रोता हैं सुखजिंदर बुगालिया चिड़ावा जिला झुंझुनू से, बलजीत कांटीपाल बीदासर जिला झुंझुनू से, नई सड़क चूरू से हमारे श्रोता हैं राजा नंदवाणी, रजत रोहित, केशव मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी, जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल गुदरी बाजार चूरू से लिखते हैं, राकेश कुमार दुधवा मीठा से और अरविंद खाड़िया लादड़िया चूरू से, निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी चेतन आप सभी लिखते हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। आपने सुनना चाहा है बरसात फिल्म का गाना, चलिए आपकी पसंद पूरी करते हैं इस गाने के साथ।

जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है या जिन श्रोताओं ने हमारा फेसबुक पेज अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है, उन सभी श्रोताओं के लिए सूचना कि अभी कुछ समय पहले हमने हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज पर इंस्टेंट फरमाइश की एक पोस्ट पब्लिश की है। आप उस पर जाइए, कमेंट सेक्शन में अपनी पसंद हमें लिख भेजिए। हम आपके नाम के साथ, आपके शहर के नाम के साथ आपकी पसंद को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। अगली फरमाइश हमने ली है रंग फिल्म से, और इस गीत के लिए फरमाइश हमें लिख भेजी है फेसबुक पेज पर भवानी सिंह राठौर सुजानगढ़ गांव टाडा से लिखते हैं। और हमारे श्रोता हैं फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसिला चूरू से संदीप सिंह सोनग्रा, प्राची सोनग्रा, कोम सोमल सोनग्रा, कार्तिक सोनग्रा और इनका पूरा सोनग्रा परिवार, ददरेवासी गंगा शिपा, ऊषा अवनी, अक्षय हासिम कुरेसी, सेंसवास जिला झुंझुनू से नेकीराम रेवाड़, मेलुसर बिकान सदाशर से अंबिका भाटी लकी, न्यांगली राजगढ़ से संदीप स्वामी, रामसरा चूरू से सचिन चौहान, शिवधोरा रतनगढ़ से प्रकाश राणा। और ये हमारे श्रोता है मऊनाथ भंजन यूपी से लिखते हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। और मऊ से ही हमारे श्रोता है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। MLB रोड ग्वालियर से हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव और एस की पप्पी। तमाम श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं इस गीत के साथ, फिल्म का नाम है रंग। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, आभार, अभिनंदन।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रंग फिल्म का गाना। अगला गीत हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से, और इस गीत के लिए हम नाम है वो शामिल कर रहे हैं मनोज, दिखते हैं नीम का थाना से। हमारे श्रोता हैं खुर्जा यूपी से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। उन्हेल जिला उज्जैन से लिखते हैं भैरूलाल वाकतरिया धाकड़ खोला, प्रवीण हृदयांश और प्रतीक वाकतरिया। और नेपानगर एमपी से हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, ये हमारे श्रोता हैं। गांव रत्नादेशर रतनगढ़ से लिखते हैं रामकिशोर, गीता, काव्या, शिक्षा, तेपेश, खुशबू। और गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, ये हमारे श्रोता हैं। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़, ये कमेंट हमें मिला है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसी, पलक लुकना, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती कुमारी, गोविंदपुरा सीकर से हमारे श्रोता हैं दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। कुछ और नाम हम शामिल कर लेते हैं। हमारे श्रोता हैं ज्योति नगर नोखा से लिखते हैं पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोवर्धन, घनश्याम, बाबू गोरी, हसन सिक्का, और ये हमारे श्रोता हैं। लिखते हैं कोटवा, नारायणपुर, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म का गाना। आप सुन रही हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से इंस्टेंट फरमाइश कार्यक्रम कुंज बिहारी के साथ। अगला गीत लिया है साथी फिल्म से और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर से लिखते हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्भी और इनका पूरा परिवार। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से हमारे श्रोता हैं मुकेश, कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज। और ये कमेंट हमें मिला है, हमारे श्रोता हैं सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। आप श्रोता हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ। परभणी से लिखते हैं रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनका पूरा संघई परिवार। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राजेश, राशि और शीतल राजेश, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। गंज नुंडवारा से लिखते हैं अनवर, सिराज अंसारी, दानिश अंसारी, उवेद, इकरार भाई और फैजान अंसारी। धाड़ी नांदुरा से हमारे श्रोता हैं श्री कृष्ण पाठे, संदीप पाठे, अमूल्य और ये कमेंट हम पढ़ रहे हैं। गंज डुंडवारा से ही आपताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर और लुपना। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं नलेश्वर नगर नरवेल से लिखते हैं पीएस नावकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोरेकर और ये कमेंट है। ग्राम लोहे डी जिला महोबा बुंदेलखंड से लिख रहे हैं जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेनू और दिव्यांश। श्रोता है पाकुड़ झारखंड से लिखते हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु दासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार कि समय निकालकर आपने इस इंस्टेंट फरमाइश कार्यक्रम में आपने हमें कमेंट के रूप में अपनी जो पसंद भेजी है उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही श्रोताओं, इससे हमें यह भी पता चलता है कि हमारे श्रोता रियल टाइम हमें सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत यानी अपनी उपस्थिति हमें दर्ज करवा रहे हैं। बहुत बहुत आभार।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश की अंतिम जो पसंद है वो हमने ली है फिल्म राजा और रंक से, और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। कुछ मिली जुली फरमाइश है जो हम शामिल कर रहे हैं। आप लिख रहे हैं बागपत यूपी से, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया अपार, और ये हमारे श्रोता हैं। कुष्टा बुजुर्ग अमरावती से लिखते हैं प्रवीण हागोणे, योगिता प्रियाली और इनका पूरा परिवार। बोरखेड़ा पितरामल जिला उज्जैन से लिखते हैं विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक, चेतन नाहटा, ये हमारे श्रोता हैं। लिखते हैं हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष। आप श्रोता लिख रहे हैं मलोट कैंप पंजाब से लिख रहे हैं सतीश, और इनके नाम है अनमोल मिगलानी, विवान और इनके पूरा परिवार। ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं वार्ड नंबर 6 सिरसिला से लिखते हैं शक्ति सिंह राठौड़, कार्तिक सुरेंद्र सिंह, भेराराम प्रजापत और अजय सिंह। सांगली जिले के जत शहर से हमें कमेंट मिला है अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, कीरत और रेहान शेख का। ये श्रोता है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इसरार नरगिस खातून का। आप सभी की पसंद को पूरा कर रहे हैं इस गीत से, फिल्म का नाम है राजा और रंक।

श्रोताओं कुछ और जो नाम हैं वो हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि अब कमेंट बॉक्स की लाइन बंद हो गई है। तो जो श्रोता जिन्होंने अभी अभी कमेंट हमें भेज दिए हैं उनके नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। आप हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं मुंडा टोला डोंडी लोहारा से लिखते हैं डोमेंद्र नितम गंगेश्वरी चंचल और कामेश, ये श्रोता हैं जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो। आप श्रोता हैं जिला खरगोन सनावत से लिखते हैं मास्टर अशोक वर्मा अर्चना वर्मा अनुज आयुषी रामेश चंद्र शेख मुशा भाईजान और राजकुमार पोडाना सुदमा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी रोहित रितु मुकेश और जगताप। ये श्रोता है मजनू का टीला से लिखते हैं कमल बालूजा मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक आकांक्षा मलिक माही मलिक सांडवा जिला चूरू से दूलचंद पारिक संतोष कुमार पारिक और यशवर्धन पारिक का भी कमेंट हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल सचिन अमन और दीपांशु खोरवाल।

तमाम श्रोताओं ने देखा कि सिर्फ एक एक श्रोता एक एक कमेंट के रूप में अपनी फरमाइश हमें भेज रहे हैं, तो ये ही सहयोग तमाम जो हमारे ईमेल बेस्ड कार्यक्रम हैं उनमें भी आप सभी श्रोताओं का चाहिए कि आप जितने भी हमारे जो प्रस्तोता है कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं उनके सहयोग के लिए आप एक कार्यक्रम में सिर्फ एक बार ईमेल भेजें और अपनी जो पसंद है उसके शामिल होने का इंतजार करें। फिलहाल इंस्टेंट फरमाइश में तमाम श्रोताओं का शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और अनुमति दें कुंज बिहारी को। नमस्कार।

श्रोता अभी सुन रही थी कार्यक्रम इंस्टेंट फरमाइश। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रही हैं FM 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: जी दोस्तों, इस गाने के साथ हो चुकी है कार्यक्रम युवाणी की शुरुआत। और आज के इस युवाणी में मैं हूं आपकी रेडियो साथी डिंपल शर्मा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी हरीश मोहन। युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार।

0: जी दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है बुधवार और बुधवार को रहता है हमारा खास सेगमेंट विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित कार्यक्रम विज्ञान धारा। जी बिल्कुल दोस्तों, जब हम विज्ञान और तकनीक की बात करते हैं तो दोस्तों ये एक अद्भुत शक्ति की तरह है, क्योंकि इसने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। आज विज्ञान जो है वो केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो बन चुका है। सुबह की शुरुआत की अगर हम बात करें तो मोबाइल अलार्म से लेकर रात को इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने तक हर जगह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग दिखाई देता है। विज्ञान ने जहां नई खोजों को जन्म दिया है, वहीं प्रौद्योगिकी ने उन खोजों को मानव जीवन के लिए उपयोगी बनाया है।
1: जी बिल्कुल सही कहा डिंपल आपने। और अगर हम पुराने समय को देखें डिंपल, तो लोगों को छोटी छोटी जानकारियों के लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत उस समय करनी पड़ती थी, और संदेश भेजने के लिए भी जो है कई दिन लग जाया करते थे। इलाज के जो साधन थे वो भी बहुत ही ज़्यादा सीमित थे, और जो शिक्षा है वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती थी। लेकिन आज जो है वो विज्ञान और तकनीक की मदद से जो है हम दुनिया भर में जो है जितने भी कार्य हैं बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं, और इंटरनेट और स्मार्टफोन ने तो दुनिया को जो है वो पूरी उसकी कायाकल्प ही कर दिया है एक तरीके से, क्योंकि अब लोग जो है वो घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, और दुनिया की किसी भी जानकारी को कुछ ही सेकेंड में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ही देन है जिसके कारण ये सब संभव हो पाया है।
0: जी बिल्कुल हरीश। और चिकित्सा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान ने सबसे बड़ी क्रांति लाई है। पहले जिन बीमारियों का इलाज जो है वो संभव नहीं था, आज आधुनिक मशीनों और तकनीकों की मदद से उनका इलाज किया जा रहा है। हम बात करें एक्सरे, एमआरआई, रोबोटिक सर्जरी और कृत्रिम अंग जैसी तकनीकों ने लाखों लोगों को नया जीवन दिया है। कोरोना महामारी के समय भी विज्ञान की शक्ति जो है वो पूरी दुनिया ने देखी, जब वैज्ञानिकों ने कम समय में वैक्सीन तैयार करके करोड़ों लोगों की जान बचाई। और इससे ये साबित होता है दोस्तों कि विज्ञान जो है वो मानवता के लिए कितनी बड़ी ताकत है। कृषि के क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आधुनिक मशीनें, उन्नत बीज, ड्रिप सिंचाई और मौसम की जानकारी देने वाली जो तकनीकें हैं, उन्होंने खेती को आसान और लाभदायक बनाया है। आज किसान जो है मोबाइल ऐप के माध्यम से जो फसलें हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और नई तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इससे देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। यानी कि यूं कहें कि हर क्षेत्र में जो हरीश जो विज्ञान है वो काम आ रहा है और हमें आगे बढ़ने के लिए जो है प्रेरित कर रहा है।
1: जी बिल्कुल सही। विज्ञान का जो रोल है हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा है, और अगर हम बात कर रहे हैं विज्ञान की तो इसमें अंतरिक्ष विज्ञान जो है वो भी आज जो है मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। भारत ने भी जो है इस क्षेत्र में अपनी बहुत ही ज़्यादा मजबूत पहचान है वो बनाई है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन्होंने भी जो है चंद्रयान जो हमारा सैटेलाइट है उसके और मंगलयान जैसे मिशनों को माध्यम से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। और ये जो विज्ञान और तकनीक की शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज वैज्ञानिक जो है वो अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं खोज रहे हैं और नई खोजों के माध्यम से मानव जीवन को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: बिल्कुल हरीश। और हालांकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनेक फायदे भी हैं और बहुत से फायदे हमें देखने को मिलते हैं, और खास सेगमेंट जो है आज का हमारा वो रहता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी थीम पर आधारित कार्यक्रम विज्ञान धारा, जिसमें हम बातें करते हैं विज्ञान ने क्या क्या नया किया है और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन सी खोज जो है वो जारी है, इस विषय पे हम बात करते हैं और इसके बारे में जो जानकारी है वो हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में आगे भी ढेरों बातें होगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से प्रोग्राम चल रहा है युवाणी, और इसके अंदर हमारा आज का स्पेशल सेगमेंट है विज्ञान धारा। इसमें हम जो है आप सभी से बात कर रहे हैं विज्ञान की उपलब्धियों की। विज्ञान जो है किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में भी जो खुला हुआ है, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, विज्ञान जो है हम देख रहे हैं कि हमारी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें भी छोटी छोटी चीज़ों में भी विज्ञान शामिल है। और ऐसी अगर एक मैं टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करना चाहूँ डिम्पल, तो वो है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो आधुनिक विज्ञान की एक ऐसी उन्नत तकनीक है दोस्तों, जिससे दुनिया को जो है एक नई दिशा देने का इसने काम किया है। आज विज्ञान जो है जिस तेजी से विकास कर रहा है, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का योगदान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नैनो शब्द यूनानी भाषा के नैनोस से लिया गया है, और इसका अर्थ ही यही होता है कि बहुत छोटा। और वैज्ञानिक भाषा में अगर मैं बात करूं तो नैनो एक माप है जो एक मीटर का जो है अरबवां हिस्सा होता है। इतनी छोटी वस्तु को सामान्य आंखों से देख पाना भी संभव नहीं होता, इसीलिए नैनो टेक्नोलॉजी में जो है वैज्ञानिक पदार्थों को परमाणु और अणु स्तर पर नियंत्रित करके नई वस्तुओं और उपकरण तैयार किए जाते हैं।
2: जी हरीश, यानी कि बात करें कि विज्ञान जो है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इतनी अद्भुत है कि ये ऐसी तकनीक है कि जो इतनी छोटी जो भी चीज है उसे हमारी आंखों से हम देख नहीं सकते, लेकिन उसका असर जो है वो पूरी दुनिया बदल सकता है। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इतने छोटे परमाणु और जो अणु हैं उनके स्तर पे जाके भी उनको नियंत्रित करके हम नई जो वस्तुएं और उपकरण हैं वो भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो कर रहे हैं। और जब किसी पदार्थ को हम बहुत छोटे आकार में मतलब बदलते हैं तो उसका गुण भी बदल जाता है, और यही कारण है कि नैनो स्तर पर बने पदार्थ सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक मजबूत, हल्के और उपयोगी बन जाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का विचार जो है वो एक वैज्ञानिक ने किया था, और उन्होंने बताया था कि अपने एक व्याख्यान के दौरान प्रस्तुत किया कि उन्होंने कहा कि भविष्य में वैज्ञानिक परमाणुओं को नियंत्रित करके नई नई चीजें बना सकेंगे, और उस समय ये विचार केवल कल्पना जैसा लगता था, लेकिन आज ये वास्तविकता बन चुका है। और बाद में वैज्ञानिकों ने ऐसे सूक्ष्म उपकरण विकसित किए जिनकी सहायता से बहुत छोटे कणों का अध्ययन करना संभव हुआ, और यहीं से नैनो टेक्नोलॉजी का विकास तेजी से शुरू हुआ।
1: जी बिल्कुल डिम्पल, और आज जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो लगभग हर क्षेत्र में किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग है वो सबसे अधिक लाभदायक माना जाता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में भी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी नई उम्मीद बनकर सामने आई है। वैज्ञानिक नैनो कणों की सहायता से ऐसी दवाइयां तैयार कर रहे हैं जो सीधे शरीर के प्रभावित हिस्से तक पहुंचती हैं, और इससे दवाइयों का असर जो है वो भी तेजी से होता है और शरीर के अन्य हिस्सों पर कम इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और भविष्य में ऐसे नैनो रोबोट भी विकसित किए जाने की संभावनाएं हमको नजर आ रही हैं, जो शरीर के अंदर जाकर बीमारी का पता लगा सकेंगे और उसका इलाज भी जो है यथासंभव कर सकेंगे। और इसके अलावा हमारी जो रक्त की जांच है, दवा निर्माण है और मेडिकल उपकरणों में भी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, और दिन ब दिन जो है विज्ञान जो है वो तरक्की कर रहा है। और हमारे हर क्षेत्र में, जैसे कि हम मेडिकल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा अच्छा जो है रिस्पांस इस नैनो टेक्नोलॉजी से देखने को मिल रहा है। और अगर डिंपल हम बात करें कि जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमारा

0: आइटम्स होते हैं उनके अंदर भी हमको काफ़ी देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी ने एक तरीके से क्रांति सी ही ला दी है। आज के स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर जो है वो पहले की तुलना में अधिक तेज़, हल्के और छोटे हो गए हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो नैनो स्तर पर तैयार किए गए जो हमारे जो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हम इसको चिप कह सकते हैं, माइक्रो चिप्स जिनको कहते हैं, ट्रांजिस्टर जिनको कहते हैं, उन्हीं के कारण से ये सब संभव हो पाया है। और वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार ऐसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण विकसित कर रहे हैं जिनकी कार्य क्षमता जो है वो अधिक हो और ऊर्जा की खपत कम हो, और भविष्य में ऐसे मोबाइल और कंप्यूटर बन सकते हैं जो बेहद पतले, लचीले और अत्यधिक शक्तिशाली होंगे।
1: बिल्कुल हरीश, अगर हम बात करें रिचर्ड फेनमैन की, तो इन्हीं की वजह से इन्होंने कहा था कि पहले जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे ही आगे जाके विकास संभव होगा, बहुत छोटे कणों का अध्ययन होगा और उसके बाद में ही नैनो टेक्नोलॉजी का विकास जो है वो तेजी से शुरू होगा। और यही विज्ञान ने कर दिखाया है दोस्तों कि अगर हम छोटे से छोटे कण का भी अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि बहुत कुछ जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सारे क्षेत्रों में जो है वो विकास हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं काफी तेजी से और भारत भी जो है नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अन्य वैज्ञानिक संस्थान इस क्षेत्र में लगातार शोध कर रहे हैं और सरकार भी विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। भारतीय वैज्ञानिक चिकित्सा, कृषि और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नैनो तकनीक के नए प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भी भारत इस क्षेत्र में विश्व के प्रमुख देशों में से शामिल हो सकता है। जी दोस्तों, खास सेगमेंट विज्ञान धारा में नैनो टेक्नोलॉजी पे बातें चल रही है, बातें आगे यूं ही जारी रहेगी। फिलहाल ये चलते हैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी दोस्तों, छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम चल रहा है युवाणी और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे विज्ञान में जो हुए बदलावों की और इसने क्या कुछ प्रोग्रेस जो है वो हमारी लाइफ में की है, और नैनो टेक्नोलॉजी पर हम बात कर रहे थे। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग पर्यावरण संरक्षण में भी जो है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। बढ़ते प्रदूषण और जल संकट को कम करने के लिए वैज्ञानिक जो है वो नैनो फिल्टर और विशेष जो पदार्थ है वो एक तरीके से विकसित कर रहे हैं, और इनकी सहायता से गंदे पानी को साफ किया जा सकता है और ऐसे हानिकारक रसायनों को भी हटाया जा सकता है। कई देशों में ऐसे नैनो फिल्टर जो हैं उनके प्रयोग किए जा रहे हैं जो पानी से बैक्टीरिया और वैशीले तत्व को जो है हटाने में सक्षम हो। इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम करने और ऊर्जा के बेहतर उपयोग में भी जो है वो नैनो तकनीक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक तरीके से निभा रही है। और खेती और कृषि की अगर मैं बात करूं डिंपल, तो उसमें भी जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो देखने को मिलता है। किसानों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी और सिद्ध साबित हो रही है। आज वैज्ञानिक जो हैं वो नैनो उर्वरक और नैनो कीटनाशक जो हैं वो विकसित कर रहे हैं जो कम मात्रा में अधिक प्रभाव एक तरीके से दिखाते हैं, और इससे जो है वो खेती की लागत भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता की अगर मैं बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहती है। भारत में नैनो यूरिया का उपयोग जो है वो किसानों के बीच तेजी से बढ़ रहा है और इससे फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही है और पर्यावरण को कम जो है नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार जो है नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम पर्यावरण को संरक्षण जो है उसका भी कर सकते हैं और अपने जो भविष्य में जो आने वाला खतरा है जिसको कि हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हमको करना है उससे भी हम जो है बचे जा सकते हैं।
3: जी, और अगर हम बात करें वस्त्र उद्योग में, तो वस्त्र उद्योग में भी नैनो टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। आज बाजार में ऐसे कपड़े उपलब्ध हैं जिन पर पानी, धूल और दाग जो है वो आसानी से नहीं लगते। इन कपड़ों पर विशेष नैनो कोटिंग की जाती है और जिससे कि ये लंबे समय तक साफ और सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा खेल सामग्री, जूते और सुरक्षा उपकरणों में भी नैनो पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र की अगर बात करें हम हरीश, तो नैनो टेक्नोलॉजी की जो नई संभावनाएं हैं वो ये पैदा कर रही हैं। वैज्ञानिक ऐसे सोलर पैनल विकसित कर रहे हैं जो अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सके। बैटरियों की क्षमता जो है उनको बढ़ाने और ऊर्जा की

0: मजबूत बनाने के लिए नैनो पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है। इससे अंतरिक्ष मिशनों की लागत जो है वो कम होगी और कार्यक्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक जो है ऐसे नैनो सेंसर विकसित कर रहे हैं जो अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार की जानकारी एकत्र करने में सक्षम है। यानी यूं कहें कि नैनो टेक्नोलॉजी है जो हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम आ रही है और हर क्षेत्र में जो अपना जादू है वो दिखा रही है।
1: जी बिल्कुल डिम्पल, और अगर हम आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में जो है भारत जो है इस क्षेत्र में विश्व के प्रमुख देशों में शामिल हो सकता है, क्योंकि भविष्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो मानव जीवन को पूरी तरह बदल सकती है, और यह तकनीक जो है वो चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग, पर्यावरण और विज्ञान के हर क्षेत्र में जो है वो नई क्रांति ला सकती है। भविष्य में ऐसे उपकरण और मशीनें जो है वो विकसित हो सकती हैं जो बेहद छोटे आकार की हों लेकिन उनकी जो क्षमता है वो बहुत ही अधिक हो, और वैज्ञानिकों का यहाँ तक मानना है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है उससे जीवन अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक आने वाले समय में बनेगा। तो दोस्तों अंत में यही कहा जा सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो विज्ञान की एक अद्भुत देन है हमारे लिए, और यह केवल एक तकनीक ही नहीं बल्कि भविष्य की नई शक्ति है। इस नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है वो मानव जीवन को बेहतर बनाने के अनेक प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, और यदि इसका उपयोग जो है हम देखें तो सही दिशा में अगर किया जाए तो सावधानी पूर्वक अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो ये मानव सभ्यता के विकास में बहुत बड़ा योगदान जो है वो दे सकती है, और आने वाले वर्षों में नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया के विकास की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकों में से एक बन जाएगी। यहाँ दोस्तों बातें जो है आगे और भी जारी है, हमारा स्पेशल सेगमेंट चल रहा है विज्ञान धारा। फिलहाल आपको लिए

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी दोस्तों, खास सेगमेंट विज्ञान धारा में अगर हम बात कर रहे थे नैनो टेक्नोलॉजी के बारे

0: में। और दोस्तों अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान की तरक्की ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। आज इंसान जिस आरामदायक और आधुनिक जीवन का आनंद ले रहा है उसके पीछे विज्ञान की ही देन है। पहले जिन कामों को करने में कई दिन लग जाते थे आज वही काम जो है वो कुछ ही मिनटों में पूरे हो रहे हैं और यही तरक्की जो है वो विज्ञान कर रहा है। और हरीश अगर हम बात करें आज की दुनिया की तो आज की दुनिया में तकनीक जो है वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि अब हमारी पहचान जो है सिर्फ नाम या हस्ताक्षर तक सीमित नहीं रह गई है। अब इंसान की पहचान उसके शरीर की विशेषताओं से भी जाने लगी है। और अगर हम बात करें कि इसी आधुनिक तकनीक के बारे में तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है फिंगरप्रिंट लॉक और फेस लॉक सिस्टम। आज लगभग हर स्मार्टफोन, बैंकिंग ऐप, ऑफिस, एयरपोर्ट और कई सुरक्षा प्रणालियों में इसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है। ये तकनीक न केवल सुरक्षा को मजबूत बनाती है बल्कि लोगों की जिंदगी को आसान और तेज भी बनाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस अद्भुत मेल ने ये साबित कर दिया है कि भविष्य की जो सुरक्षा है अब पासवर्ड या चाबी से नहीं बल्कि इंसान की अपनी पहचान से जुड़ी होगी।
1: जी बिल्कुल सही कहा डिंपल आपने। और ये जो फिंगरप्रिंट तकनीक जो है इसका विज्ञान है वो बायोमेट्रिक्स पर आधारित है। बायोमेट्रिक्स वह तकनीक है दोस्तों जिसमें किसी भी व्यक्ति की शारीरिक या व्यवहारिक विशेषताओं का जो है वो उपयोग उसकी पहचान के लिए किया जाता है। हर इंसान की उंगलियों के निशान जो हैं वो अलग अलग होते हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार दुनिया में किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट है वो पूरी तरीके से समान नहीं हो सकते। हमारी उंगलियों पर जो है वो बने छोटी छोटी जो रेखाएं हैं उनके घुमाव का एक विशेष पैटर्न है वो बनाते हैं और जिन्हें हम रीज और वैली हम कहते हैं। और यह जो पैटर्न है वो मशीन के द्वारा स्कैन किया जाता है और व्यक्ति जो है वो डिजिटल रूप से सुरक्षित इससे किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति है वो अपने फ़ोन या किसी डिवाइस को छूता है तब सेंसर जो है उसकी अंगुली के निशान को पढ़कर पहले से सेव डाटा से मिलान करता है और यही दोनों पैटर्न जो है जब मेल खा जाते हैं तब जो है वो स्मार्टफोन का या किसी भी जो डिवाइस है उसका लॉक है वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो मुख्य प्रकार से जो है वो तीन प्रकार के हो सकते हैं और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक है ऑप्टिकल सेंसर, दूसरा कैपेसिटिव सेंसर और तीसरा अल्ट्रासोनिक सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर जो है वो कैमरे की तरह कार्य करता है और उंगली की जो तस्वीर है उसको लेकर उसकी पहचान करता है। कैपेसिटिव सेंसर जो है वो विद्युत आवेश को के माध्यम से जो है वो अंगुली की सतह को पढ़ता है और अधिक सुरक्षित ये उसको माना जाता है। वहीं अल्ट्रासोनिक सेंसर की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वह ध्वनि तरंगों का उपयोग करके अंगुली जो है उसकी गहराई तक का नक्शा जो है वो तैयार करता है। और यह जो तकनीक है वो आधुनिक स्मार्टफोनों में अधिक उपयोग हो रही है क्योंकि यह जो तेज़ और अधिक ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। और विज्ञान में इन सेंसरों को इतना विकसित कर दिया है दोस्तों कि अब केवल एक हल्के से स्पर्श से जो है वो पहचान संभव हो जाती है।
0: जी बिल्कुल हरीश। और अगर हम बात करें फेस लॉक के बारे में तो जो फेस लॉक तकनीक है ये भी बायोमेट्रिक सुरक्षा का ही हिस्सा है। फेस लॉक में मशीन जो है वो किसी व्यक्ति के चेहरे की बनावट को पहचानती है और अगर हम बात करें हर व्यक्ति का जो चेहरा है उसकी लंबाई, आंखों की दूरी, नाक का आकार और चेहरे की जो संरचना है वो सारी अलग अलग होती है। फेस रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद सिस्टम जो है वो कैमरे की मदद से इन विशेषताओं का विश्लेषण करता है और फिर डिजिटल डाटा में इसको बदल देता है। जब व्यक्ति दोबारा कैमरे के सामने आता है तो सिस्टम जो है चेहरे का मिलान पहले से सेव जो डेटा होते हैं उनसे करता है और यदि चेहरा जो है वो मेल खाता है तो फोन या सिस्टम का जो लॉक है वो अनलॉक हो जाता है। अब फेस लॉक तकनीक की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। AI आधारित सिस्टम जो है वो समय के साथ चेहरे में होने वाले छोटे बदलावों को भी समझने लगते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने चश्मा पहन लिया हो, दाढ़ी बढ़ा ली हो या बालों की स्टाइल जो है वो कुछ बदल ली हो तब भी सिस्टम उसे पहचान सकता है। कुछ आधुनिक स्मार्टफोन जो है वो उसमें 3D फेस स्कैनिंग का उपयोग करते हैं जिससे कि चेहरे की गहराई और आकार का भी अध्ययन किया जाता है। इससे सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाती है क्योंकि केवल फोटो दिखाकर फोन नहीं खोला जा सकता है। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जो तकनीक है उसका सबसे बड़ा लाभ है दोस्तों सुविधा। पहले लोगों को कई पासवर्ड याद रखने पड़ते थे, पासवर्ड भूल जाने पर परेशानी होती थी, लेकिन अब केवल उंगली लगाने या चेहरे को दिखाने से कुछ ही सेकंड में फोन खुल जाता है। और आपका इस बारे में क्या कहना है हरीश?
1: जी बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पहले जब बहुत ज़्यादा समय जो है इन सब चीज़ों में लगता था, लेकिन जब से ये तकनीक आई है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की, तो हम देखते हैं

0: ये जो तकनीक है वो हमारा बहुत ज़्यादा समय है वो बचाती है, और जो भी इस तकनीक का उपयोग करता है उसको उसका जो अनुभव है उसको बहुत ही ज़्यादा बेहतर है ये बना देती है। हम बात करें बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान में भी जो है वो बायोमेट्रिक तकनीक है उसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि इससे जो है वो धोखाधड़ी के मामलों में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है, क्योंकि किसी भी दूसरे व्यक्ति के लिए आपकी बायोमेट्रिक पहचान की नकल करना इतना आसान नहीं होता है। तो हमारी जो कह सकते हैं कि जो हमारे वित्तीय लेन देन होते हैं, हमारी जो पैसे की जो हम इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं, उसको भी एक तरीके से ये बायोमेट्रिक जो है फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक है ये बहुत ही ज़्यादा इसको सुरक्षित कर देते हैं। और अगर हम बात करें आज की दुनिया के कई देशों में बायोमेट्रिक जो तकनीक है उसका उपयोग है वो सरकारी पहचान प्रणालियों में भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और देश विदेश की क्यों बात करें डिम्पल, हमारी जो भारत में भी हमको हम देखते हैं कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या फिर अगर प्राइवेट ऑफिसेज की भी बात करें तो वहाँ पे जो अटेंडेंस का सिस्टम जो है वो भी बायोमेट्रिक से ही हमको देखने को मिलता है। सुबह जब भी कोई एम्प्लॉय आता है तो वो अपने फिंगर को जो है उस बायोमेट्रिक मशीन के ऊपर रखता है और उससे जो है उसकी अटेंडेंस है वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो हम तकनीक का इस्तेमाल जो है हमारे डे टू डे लाइफ में कर रहे हैं इससे बहुत ही ज़्यादा आसानी है हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे समय की काफ़ी ज़्यादा बचत है हमको देखने को मिलती है। क्योंकि पहले हम देखते थे कि जब भी कोई एम्प्लॉई ऑफिस जाता था तो उसको मैनुअल रजिस्टर में जो है अपनी जो अटेंडेंस है वो रिकॉर्ड करनी पड़ती थी, पेन से जो है वो अटेंडेंस मार्क करनी पड़ती थी, लेकिन जब से ये बायोमेट्रिक मशीनें जब से आ गई हैं तो बिल्कुल टाइमली जो है वो सारी अटेंडेंस रिकॉर्ड होती है और कोई भी दूसरा व्यक्ति जो है वो किसी भी दूसरे एम्प्लॉय की अटेंडेंस नहीं लगा सकता है। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों यही है कि इससे जो है समय की काफ़ी ज़्यादा बचत हुई है, और हमारी जो ये तकनीक है इसको अगर हमने हमारी ये इस डे टू डे लाइफ में अगर शामिल कर लिया है तो बहुत से बदलाव जो है हमारी लाइफ में हमको देखने को मिल रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, और भविष्य में जो बायोमेट्रिक तकनीक है वो और भी उन्नत होने वाली है। वैज्ञानिक अब आयरिस स्कैनिंग, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन और हार्टबीट की जो पहचान जैसी तकनीकों पर भी काम कर रहे हैं। आने वाले समय में संभव है कि केवल आवाज सुनकर या आंखों की पहचान से ही सभी डिवाइस संचालित होने लगे। स्मार्ट घर, स्मार्ट कार और डिजिटल बैंकिंग में ये जो टेक्नोलॉजी है और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ मिलकर ये तकनीक जो है भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। विज्ञान ने इंसान की सुरक्षा और सुविधा को भी नई दिशा दी है। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जैसी तकनीकी ये दिखाती है कि कैसे मानव शरीर स्वयं एक पासवर्ड बन चुका है, और ये तकनीक न केवल आधुनिक जीवन को आसान बना रही है दोस्तों, बल्कि डिजिटल दुनिया को भी अधिक सुरक्षित बना रही है। और इसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और जागरूकता रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि तकनीक का सही उपयोग और लोगों की निजी जानकारी जो है वो सुरक्षित रह सके, इसलिए जागरूक रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ये अद्भुत आविष्कार आने वाले समय में मानव जीवन का और भी महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाला है।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: दोस्तों, स्पेशल सेगमेंट जो है विज्ञान धारा, इसके अंदर हम साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े आविष्कार हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो है वो विज्ञान की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक ने जो मानव जीवन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि इंसान ने जो है वो चांद पर भी कदम रख रखा है, मंगल ग्रह तक जो है वो अपने मिशन भेजे हैं और हजारों उपग्रह के माध्यम से पूरी दुनिया को जो है वो एक दूसरे से जोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष की जो ये इस तेज प्रगति के साथ साथ एक नई जो समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसे कि हम स्पेस ड्रेबिस यानी कि अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। और यह जो समस्या है वो आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय बन चुकी है। स्पेस ड्रेबिस उन टूटे फूटे उपग्रह रॉकेट के

0: कणसों और छोटे छोटे धातु के जो टुकड़े होते हैं उनको कहा जाता है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो है अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। जब कोई सैटेलाइट पुराना हो जाता है या किसी कारण से नष्ट हो जाता है तो उसके हिस्से जो है वो अंतरिक्ष में तैरते रहते हैं, और इसी तरह रॉकेट लॉन्च होने के बाद बचने वाले हिस्से भी जो है वो कचरे में बदल जाते हैं। यह जो मलबा है वो बहुत तेज गति के साथ जो है पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहता है, और वैज्ञानिकों के अनुसार इन टुकड़ों की गति जो है वो लगभग 25,000 से 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। और ये अंतरिक्ष कचरा जो है इसलिए खतरनाक माना जाता है क्योंकि इसकी टक्कर से जो है सक्रिय उपग्रह या फिर अंतरिक्ष यानों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो अंतरिक्ष का जो कचरा है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है, और इसको निपटाने के प्रयास में काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक है वो शोध में भी जुड़े हैं। तो हमें भी जो है यही प्रयास करना चाहिए, सभी को यही अवेयर करना चाहिए कि जो ये अंतरिक्ष का जो कचरा है इसको किस प्रकार से जो है हम मिटा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि इसको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, यानी कि अंतरिक्ष मलबा जो है वो एक चुनौती जरूर है, लेकिन ये मानव विज्ञान और तकनीक की प्रगति का प्रतीक भी है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां जो है वो मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने में जुटी है, और ढेरों जानकारी हम लेकर आए इस खास सेगमेंट में। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस कार्यक्रम से, जाने की इजाजत दें आपकी दोस्त डिंपल शर्मा को
0: और आपके रेडियो साथी हरीश मोहन को।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं के साथ उनका कार्यक्रम युववाणी FM 100.7 मेगाहर्ट्ज़ ब्रह्म आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:55 हो चुके हैं। अब आप जानेंगे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद शाम 6 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 6:10 पर आप सुन पाएंगे देशभक्ति फिल्मी गीत। शाम 6:20 पर आप सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार, ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से दिल्ली होंगे। तदुपरांत 6:30 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी, इसमें आज आप सुनेंगे चर्चा कृषि और नवाचार, एक और चर्चा होगी जल बचत के तरीके और कृषि में मूल्य संवर्धन के बारे में, आपको सुनवाए जाएंगे लोकगीत और लोक भजन।

रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत से सजा हमारा गुलदस्ता। 8:45 पर आप सुन पाएंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज एट 9। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे राजस्थानी लोक संगीत।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 आप सुन पाएंगे शास्त्रीय संगीत। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सभा के अंत में रात्रि 11 आप सुनेंगे पहले

अभी अपने जाना कार्यक्रम विवरण एफएम 107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

107.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हम से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारी दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और 6 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान

गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति फिल्मी गीत एफ एम 110.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार। तदुपरांत 6:30 पर आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिममेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मलिति कृत्रिममेधाचालितः वास्तविकसमय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरणमञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिममेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते, एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तंत्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या राज्यांतर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि

0: विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
1: कनाडा या

0: उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्राप्रसङ्गे श्रीगोयलः कनाडादेशस्य अन्ताराष्ट्रियव्यापारमन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धु इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमानपूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढसर्वकारोद्योगसहयोगेन चालितस्य अधिकसशक्तस्य पूर्वानुमानयोग्यस्य च व्यापारपारिस्थितिकीतन्त्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री के ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने को मंजूरी दी। और आरपीएससी ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। राज्य में तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज श्रीगंगानगर में दिन का पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर, फलौदी, पिलानी, बीकानेर और चूरू में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। राज्य के कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय तेज तपिश के साथ लोगों को रात में राहत नहीं मिल रही है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा जा रहा है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा में सबसे गर्म रात रही। भीषण गर्मी से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। इस बीच प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने सभी विभागों को आपसी तालमेल के साथ जीरो कैजुअल्टी का लक्ष्य लेकर चलने को कहा है। सिरोही में तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों की दिनचर्या बदल रही है। झुंझुनू से हमारे संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी से जिलेवासियों का हाल बेहाल है। दिन के समय बाजारों में लोगों की चहल पहल कम नजर आ रही है।
2: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बढ़ते तापमान और लू के प्रभाव को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य और परिवार की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ का सेवन करने, बच्चों, बुजुर्गों और अस्वस्थ व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने तथा अत्यधिक धूप में बाहर निकलने से बचने को कहा है। साथ ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की अपील की है। इधर मौसम केंद्र जयपुर ने कल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी कई जिलों के लिए तेज गर्मी के साथ आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग

0: द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि एसआईआर का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने कुछ रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची वीवीपैट से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि विद्यार्थी कानून की शिक्षा का उपयोग जरूरतमंदों, पीड़ित और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए करें। उन्होंने कानून की शिक्षा में राष्ट्र और समाज हित को हमेशा आगे रखने का आह्वान किया। श्री बागड़े आज जयपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधि शिक्षा में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का समावेश किया जाए तो सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। समारोह में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए पुराने कानून बदलकर 3 नए कानून लाए गए हैं। इस दौरान 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए, वहीं 25,000 से अधिक विद्यार्थियों की ऑनलाइन डिग्रियां सौंपी गई। करौली जिले में पिछले 12 वर्ष में पानी की समस्या के हल के लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। जिले की मासलपुर तहसील की भावली ग्राम पंचायत के किसान सवाई सिंह ने बताया कि तालाब निर्माण कार्य से जल संरक्षण के काम को मजबूती मिली है। केंद्र सरकार की इस पहल से क्षेत्र में हुए वर्षा जल संग्रहण के परिणाम स्वरूप भूजल स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
1: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेसिन जाता है, पानी अब डट गया है। उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है। बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय परिवहन और हैंडलिंग के खर्च में केंद्रीय सहायता के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही राशन दुकान के डीलरों के मार्जिन पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए भी सहायता मानदंडों को संशोधित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल रात बीकानेर में भारत पाक सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीमा से सटे जिलों में सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला लिया गया। गृह मंत्री ने अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर तक के दायरे में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के सफल और प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राज्य सरकार को मिलकर रणनीति बनाने

0: करने को कहा ताकि घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और अन्य सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जा सके। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है। इनमें राज्य सेवाओं के 192 और अधीनस्थ सेवाओं के 415 पद शामिल हैं। इस भर्ती के संबंध में विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 जून से शुरू होंगे। ये आवेदन 3 जुलाई रात्रि 12 बजे तक किए जा सकते हैं। परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर 9 जनवरी को ही जारी कर दिया गया था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने आज जोधपुर में बीज उत्पादक कंपनियों और फैक्ट्रियों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी मात्रा में अमानक बीज जब्त करवाए। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि घटिया बीजों से किसानों और निर्यात प्रक्रिया को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि बरामद किए गए बीजों की जेनेटिक शुद्धता जांचने के लिए ग्रो आउट टेस्ट GOT करवाया जाएगा।
1: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो GOT भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कर लोगों को इससे जोड़ा जा रहा है। कार्यक्रमों की कड़ी में आज गौशालाओं, पशु चिकित्सालयों और दुग्ध संघों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और गौ संरक्षण से जुड़े काम किए जा रहे हैं। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने, वहीं पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गौशालाओं में वृक्षारोपण किया और पंछियों के लिए परिंडे बांधे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को नाबालिग से दुष्कर्म मामले में राहत देने से इनकार करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के जस्टिस अरुण मूंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की बेंच ने आज ये फैसला सुनाया। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। अदालत ने उसे आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी और लू की चपेट में। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री से ऊपर पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वैध बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दी। और RPSC ने राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा के 607 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 जून से शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मैना देवी ने तैयार किया है। राज्य के उत्तरी भाग में स्थित कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़। घग्गर नदी के किनारे बसा ये जिला उपजाऊ भूमि के साथ ही प्राचीन संस्कृति के लिए जाना जाता है। इसी नदी के तट पर स्थित है भटनेर किला, जो काफी पुराना और मजबूत मिट्टी से बने किलों में से एक है। इंदिरा गांधी और भाखड़ा नहर के कारण इस क्षेत्र में गेहूं, सरसों और कपास की अच्छी खेतीबाड़ी होती है। इस जिले को फलों की टोकरी भी कहा जाता है। जिले की चिट्ठी में आप तक पहुंचाएंगे बीते दिनों की खास खबरें। सबसे पहले बात किसानों की। जिले में खरीफ 2025 सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 108 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा क्लेम जारी किया गया। खरीफ फसल की प्राकृतिक आपदाओं और कीटों से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ये राशि सीधे बैंक खातों में जमा की गई। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने बताया कि किसान अपने बीमा दावे की स्थिति की जानकारी फार्मर कॉर्नर के जरिए हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 144-47 पर संपर्क

0: कर भी इस बारे में जानकारी ली जा सकती है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रमोद कुमार ने बताया कि इस भुगतान से किसानों को बड़ी राहत मिली है, इससे उन्हें आगामी खेती के लिए भी वित्तीय मजबूती मिलेगी। जिले में पिछले दिनों ग्राम रथ अभियान की धूम रही। इस अभियान के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों को सरकार की जनहित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने मैना वाले गांव पहुंचकर ग्राम रथ का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत भी की। श्री पूनिया ने संगरिया क्षेत्र के शेरेका गांव में संध्या चौपाल में शिरकत की। चौपाल में ग्रामीणों ने बारदाना, फसल तुलाई और एमएसपी से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखी, जिस पर श्री पूनिया ने उचित समाधान का आश्वासन दिया। गंगा दशमी के मौके पर जिले में बारिश के पानी को सहेजने, जल स्रोतों की सफाई और मरम्मत करने तथा पानी की बचत की अलख जगाने वाला अभियान शुरू हुआ। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का जिला स्तरीय कार्यक्रम रावतसर के लखू वाली हेड पर हुआ, जहां माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक, जिला प्रभारी सचिव डॉ. जोगाराम और जिला कलेक्टर डॉ. यादव ने जल पूजन कर और पौधा रोप कर अभियान का शुभारंभ किया। जिले में हीटवेव से बचाव के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें हनुमानगढ़ जंक्शन और बस स्टैंड पर यात्रियों और कर्मचारियों को ओआरएस के पैकेट बांटे गए। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से लोगों से लगातार तरल पदार्थों का सेवन करने और धूप से बचने की सलाह दी गई। वहीं प्रशासन की ओर से जिले भर में प्याऊ और परिंडे लगाने का अभियान भी शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट परिसर में परिंडे बांधकर इसकी शुरुआत की। भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 13 जून तक अवकाश रहेगा। बच्चों को दिया जाने वाला पोषाहार भी टेक होम राशन के रूप में घर घर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही हीटवेव के बढ़ते असर को देखते हुए चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रचंड गर्मी के इस दौर में चिकित्सकों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई है। उधर जनगणना प्रक्रिया में लगे प्रगणकों को भी लू और तापघात से बचाव के लिए इंतजाम रखने का परामर्श दिया गया है। जिला कलेक्टर ने पिछले दिनों पीलीबंगा के एक वार्ड का औचक निरीक्षण कर जनगणना प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने लोगों से गणना कर्मियों को सही जानकारी देकर राष्ट्रीय महत्व के इस काम में सहयोग करने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उम्मेदीलाल मीणा ने भी रावतसर, नोहर, भादरा और टिब्बी सहित कई क्षेत्रों में निरीक्षण कर जनगणना काम संबंधी व्यवस्थाएं जांची। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पिछले दिनों जिले के अयालकी गांव पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का शिलान्यास किया। ये भवन करीब 4.5 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जाएगा। श्री दिलावर ने जिले के कई स्कूलों का मुआयना किया। उन्होंने शिक्षकों से नवाचार और नैतिक संस्कार विकसित करने की बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। कई सरकारी स्कूल निजी विद्यालयों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में सड़क हादसों में घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले 9 गुड सैमरिटन को प्रशस्ति पत्र और 80,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत ये राशि मददगारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही हनुमानगढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रदेश रा घणघर हलका माए जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माए पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टारा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली राते राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। और RPSC राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवारा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकों अर्जियां देवन रो काम 4 जून सरू भैला। समाचारन सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। राज्यरा घणखर हलका माए जोरदार तावड़ो पड़ रियो है और लू बाज रही है। आज श्री गंगानगर में सब

0: बत्तो 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नापी चियो। बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, पिलानी और फलौदी माई अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा समेत कई ठोणा कम से कम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस ऊंचो चाल रियो है। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सागे कोटा माए रात्रि भगती जोरदार गर्मी रही। इन बीचे प्रशासन री ओरू गर्मी रो सामो करण सारू जरूरी इंतजाम करया जा रहा है। भीलवाड़ा माए जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू सगला महकमा न तालमेल सागे काम करण बाबत कहो। लूरी फेंट माए आया मरीजा सारू अस्पताल माए न्यारी व्यवस्था राखण रा हुकम दिया चिया है। सिरोही जिला माए तेज तावड़ा और उन्ना बायराऊ जिंदगी माथे घणो असर पड़ रियो है। माणा झुंझुनू खबर नवीस बतायो के जोरदार तावड़ाऊ दिन री भगत बाजारा माए लोगा री आवन जावन कम वेगी है।
1: झुंझुनू में नौतपे का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, जिससे तेज गर्मी और लू ने आमजन का हाल बेहाल कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। संदीप केडिया, आकाशवाणी समाचार, झुंझुनू।
0: इन बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बढ़ती गर्मी और लू रा असर न ध्यान रखता थका जनताओं सावचेती राखण रियरज कीनी है। सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री शर्मा जनताओं जरूरी मात्रा माए पानी और पीवन री दूजी चीजा काम लेवन बाबत कहो। वे बच्चा, बुजुर्गा और मंदा लोगा रो खास ध्यान राखण और जोरदार तावड़ा री बगत कठे नी जावन सारुई कहो। मुख्यमंत्री परिंदा और जिनावरा सारुई दाना पानी और चारा री व्यवस्था करण रियरज कीनी। मौसम केंद्र जयपुर काल श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी और जैसलमेर जिला माए लू बाजण सारू चेतायो है। इसागे कई जिला माए तेज गर्मी सागे आंधी बारिश सारू चेताई चियो है। सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग कानून वोटर लिस्टारी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया री वैधता बरकरार रखी है। अदालत कहो के SIR रो मकसद स्वतंत्र और निपक्ष चुनाव करावण हो। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागचीरी पीठ लारला साल जून महीना माए चुनाव आयोग कानून बिहार माए SIR करावण री अधिसूचना ने चुनौती देवन वाली अर्जियां माथे सुनवाई करता थका ओ फैसलो सुनायो। भारतीय जनता पार्टी SIR ने पूरी तरह कानूनी करार देवन रा सुप्रीम कोर्ट रा फैसला रो स्वागत कीनो है। सुप्रीम कोर्ट मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची VVPAT ओं जुड़िया दिशा निर्देशा माए बदलाव री मांग करण वाली अर्जियां माथे सुनवाई कीनी। अदालत कहो के इन बारा माए फैसलो लेवन रो हक चुनाव आयोग ने है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कानून री भणाई जरूरतमंद लोगा पीड़ित और वंचित तबका रा भला सारू काम लेवन बाबत कहो है। वह कानून री भणाई माए देश और समाज रा भला ने हमेशा ऊंचो राखण री अपील कीनी। श्री बागड़े आज जयपुर माए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय रा तीजा दीक्षांत समारोह माए बोल रहा हा। राज्यपाल कहो के कानून री भणाई माए देश री सभ्यता और संस्कृति शामिल करण कई हल्का माए कामयाबी मिल सके है। इस मौके केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो के जनता ने न्याय दिरावण सारू जूना कानून बदल और 3 नुआ कानून लाई चिया। कार्यक्रम में 9 विद्यार्थियों ने सोना रा तमगा देर नवाजी चिया, जबकि 25,000 बत्ता विद्यार्थियों ने ऑनलाइन डिग्रियां दीरी ची। करौली जिला माए लारला 12 साल माए पानी री समस्या सुलझावण सारू न्यारी न्यारी कोशिशा करी ची है। जिला री मासलपुर तहसील री भावली ग्राम पंचायत माए तलाव बनावण पानी बचावण रा काम ने मजबूती मिली है। गांव वाला रो कहणो है कि केंद्र सरकार री पहल हल्का माए बिरखा रो पानी भेड़ो भेवण जमी हेठे पानी रो लेवल ऊंचो आ रियो है।
2: मेरा नाम सवाई सिंह है। इस तालाब से हमको सुविधा है। इस तालाब से पहले पानी बेसी जाता, पानी अब डट गया है, उससे मवेशी को सुविधा भी है और जमीन में जल स्तर बढ़ गया है, बाद किसानों को सुविधा है और बढ़िया काम में आ रहा है और बढ़िया सरकार को धन्यवाद देते हैं।
0: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। केंद्रीय

0: मंत्रिमंडल री माली मामला री समिति आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली रातेत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस न जारी राखन री मंजूरी दे दीनी। इसारू 25,530 करोड़ रुपया राखी चिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली माई खबर नवीसा ने आज जानकारी दीनी। वे बतायो कि इन योजनाओं राज्यों री एजेंसियां ने एक उन दूजा राज्य माई अनाज लावण ले जावण माई मदद मिलेला।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत पाक सरहद माथा हिफाजत रा और पुख्ता इंतजामात करण सारू काल बीकानेर माय सुरक्षा समीक्षा बैठक कीनी। मीटिंग माय सरहद कनेरा हर जिला सारू चार ही मेर निजर राखण वालो सुरक्षा फ्रेमवर्क तैयार करण रो फैसलो करी चियो। गृह मंत्री अंतरराष्ट्रीय सरहद 15 किलोमीटर ताई रा हलका माय गैर कानूनी बनाई चुनाई ने रोकण रा हुकम दीना। वह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 ने असरदार तरीकों लागू करण माथे जोर दीनो। गृह मंत्री घुसपैठ तस्करी अतिक्रमण और सरहद पार उभवण वाला अपराधा माथे रोक लगावण सारू बीएसएफ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी और राज्य सरकार ने मिलर रणनीति बनावण सारू ही कहो। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती 2026 रातेत 607 ओहदा माथे भर्ती री अधिसूचना जारी करती नी है। इनमाय राज्य सेवा वारा 192 और अधीनस्थ सेवा वारा 415 ओहदा शामिल है। भर्तियों जुड़ी विगतवार जानकारी आयोग री वेबसाइट माथे देखी जा सके है। आयोग रा सचिव बतायो के आ ओहदा सारू ऑनलाइन तरीका अर्जियां 4 जून 3 जुलाई 2026 री रात 12 बजे ताई दी जा सकेला। ई परीक्षा रो कोर्स आयोग री वेबसाइट माथे 9 जनवरी नई जारी करतियो छियो हो। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज जोधपुर माए बीज कंपनियां और कारखाना री औचक जांच कीनी। इस दौरान मोटी तादाद माए अमानक बीज जब्त करी चिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता था का डॉक्टर मीणा कहो के बरामद करी जिया बीजा री जेनेटिक शुद्धता री जांच सारू ग्रो आउट टेस्ट जीओटी करायो जावेला।
2: करीबन 50 करोड़ का यहाँ सीड है जो पूरी तरह से असली सीड नहीं है, घटिया मूंगफली है जिसको किसानों को बेचा जाएगा। हम इसकी सेल रोक रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सेल रोक के इसके सैंपल लेंगे और सैंपलों की जो जीओटी भी कराएंगे और लेबोरेटरी से जांच भी करेंगे।
0: राज्य में चल रहा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रातेत आज गौशालावां ढंडारा अस्पतालां और दूध उत्पादक संघा में खास अभियान चलाई चियो। इस दौरान पानी पर्यावरण और गायां ने बचावण जुड़िया काम करी चिया। जोधपुर में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर और पाली में प्रभारी मंत्री झाबर सिंह खर्रा गौशालावां में पौधा रोपिया और परिंदा सारू परिंडा बांधिया। सवाई माधोपुर भीलवाड़ा जैसलमेर सिरोही और सलुम्बर माई न्यारा न्यारा कार्यक्रम राखी चिया। राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम बापू ने नाबालिगों यौन दुराचार रा मामला माय साता देवण उन्नट गयो है। हाईकोर्ट री जोधपुर पीठ रा न्यायमूर्ति अरुण मुंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित री बेंच आज मारी सजा बनाई राखण रो फैसलो सुनायो। कोर्ट आसाराम समेत 3 दोषियां री अपील माथे सुनवाई करता थका कहो के निचली अदालत कानून सुनाई जी सजा माय कोई बदलाव नी करियो चावेला। हालांकि अदालत वाने पोक्सो कानून रातेत मिलर यौन दुराचार करण यौन उत्पीड़न करण और आपराधिक साजिश जुड़िया आरोपों बरी कर दीनो। आईपीएल क्रिकेट होड माए आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद बीच एलिमिनेटर मुकाबलो खेलू जावेला। अब थोड़ी देर पछे 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ माए सरू फेवन वाला ई मुकाबला माए जीतन वाली टीम शुक्रवार ने दूजा क्वालिफायर मुकाबला माए गुजरात टाइटन्स सागे मैच खेलेला। होड रो फाइनल मुकाबलो 31 मई ने अहमदाबाद माए खेलो जावेला। इनु पहली काल खेली जा क्वालिफायर मुकाबला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटंस ने 92 रनों हरार फाइनल में पूगी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावण वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर माय खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। प्रदेश रा घणखर हलका माय जबरदस्त तावड़ा बीच लू रो असर। श्री गंगानगर माय पारो 48 डिग्री सेल्सियस ने पार कीनो। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्टां रा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर ने वैध बतायो। केंद्रीय मंत्रिमंडल री माली मामला नी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली रा तहत राशन लावण ले जावण और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस ने जारी राखण री मंजूरी दीनी। आरपीएससी आरएएस रा 607 ओहदा माथे भर्ती सारू विज्ञप्ति जारी कीनी। ऑनलाइन तरीकाओं अर्जियां देवन रो काम 4 जून नु शुरू भेला। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: एफएम 110.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं किसान भाई बहनों के साथ उनका कार्यक्रम खेती और गृहस्थी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तपे दुपहरी जेठ री बड़े मरुधर री माए लुआ चाले आग सी नोतपा जोर दिखाए। कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनना रहे सगले भाई बहना ने टाबरा ने बड़े बुजुर्गान भाई अयूब खान गोड़
2: और भाई देवा का निशु मोकला मोकला
1: राम राम, राम राम राम राम देवा भाई राम राम।
2: अयूब भाई थाना भी मोकला मोकला राम राम। अरे बार जो को टीम है ने वो उन्याले को जोर को जो को टीम है वो चलन लाग रही है और ई उन्याले के महीने मान लो जो को अभी थे मैं तो आ थारी कहन भी लाग रही आज की थी आ शायरी कई भाई बात है के तावड़ियों जोर को तपन लाग रही है और ई तपते तावड़िये के मायने भी कई प्रकार की है के ख्यात है बे मिनख ने राखनी बहुत जरूरी है। अब के है के जिया मान लो मौसम तो आपने मान लो आपने देश की आ पहचान है के हटे के है के हर चीज है ना रंग बिरंगी है अटे का मौसम भी रंग बिरंगा ही अटे भांत भांत का मान लियो बोली चाली ही भांत भांत का मिनक ही भांत भांत का तीज त्योहार ही और मौसम तो थोड़ा थोड़ा बदलता ही रहे हैं तो मौसम बदलतो भी रहना चीज है और हर मौसम को आपको एक नयो मिजाज है नयो उपयोग है पण के है के भी मौसम में की ख्यात राखनी भी जरूरी हो है। सर्दी को मौसम हो है जब तो मान लो सर्दी की ख्यात रखा और अब तावड़ियों को मौसम है तो तावड़ियों की है के इतो जोर को तपन लाग रही है बारे के जगह की कोई ठाई नहीं है। मान लो जब लुआइया की जोर की चल रहे हैं के जे मान लो दोपहर के माँ पा और जे थोड़ी सी है सावधानी करके बाहर निकल जावा तो सीधा अपन लू की चपेट में आ सका हाँ।
1: देखो थे देवा भाई कार्यक्रम में भांत भांत के मौसम की बात करी तो भांत भांत को मौसम से देखो अपनो चूरू भी है जी को अछूतो को नहीं है। आपा गर्मी की बात करा तो गर्मी आपका एकदम चरम पे है और जब आप सर्दी की बात करा तो वो 0 डिग्री तक भी है जी को जावे तो आपा चूरू का मानस हाँ आपा खेती बाड़ी करनिया हाँ आपा पशुपालन रखनिया हाँ तो मौसम की मार तो देखो सह नहीं सहद है पर आपा देवा भाई इतना जागरूक हो गया हाँ कि मौसम की मार से बचने खातर आपा अपनो पूरो

0: वो अपनो राखा और ईसोई जाप तो आप अपने पशुधन को राखा। कभी पशुधन ना आपा लुआऊ बचावा, आपा अपना आपने लुआऊ बचावा। और जिका छोटा जिका जीव है, जिको अपनी गाय को बछड़ी और भैंस को पाड़ी और बकरी को बच्ची और भेड़ को उरनी और देखो आन की सारा की सारा आपा क्या क्या देवा गर्मी में राखा। सागे सागे ये बात को भी ध्यान रखा कि बनाना आपा बखत सारू पानी है वो भी पिलाता रहा। और पानी जब आपा भरपूर मात्रा में अपने पशुधन ना पिलाऊंगा, आपा भरपूर मात्रा में आपा पानी पियूंगा तो निश्चित रूप से देवा भाई आपा गर्मी से लड़ने की अपने शरीर में इतनी ताकत पैदा हो जैसी कि गर्मी अपने शरीर पर कोई ज्यादा आपको प्रभाव है बा कौन छोड़ पाओगे। बस जरूरत है आपा ने जागरूक रहने की कि भाई खानो आपा नहीं आल को रह खानो है अयाल को आपा ने पहनो है जैसा आपा गर्मिया से जी को बच सका।
1: भाई देखो बाहर नौ तप्पा ही ना शुरू हो रही है और नौ तप्पे के महीने की है के तापमान है ना वो ऊंचो चढ़े और हवा है ना हवा लू में बदल जा तो बाहर लू चलन लाग रही जबरी लू चलन लाग रही ई लू में की अपन सावधानी रखने की जरूरत हो। तो पहलो काम तो वही है कि भाई अपन बगत बगत के ऊपर की है के पानी है वो अपन खुद ने भी पीतो रहना है अपने पशुधन ने भी पियानो है और अपना जगह ननड़िया टाबर ही अपना बूढ़ा बुजुर्ग ही बाकी अपने की है के विशेष ख्यात रखने की जरूरत है। और बाहर जे आप बात करा पहनावे की तो भाई की है के बाहर आपनों जो ज्यादातर आप दिखाने तो पहनावे में की है के जगह युवा है ना वे तो ज्यादातर आजकल टाइट कपड़ा पहरे लग गया और मान लो बाजार के मैंने देखा तो भांत भांत का कपड़ा आ रहे हैं जगह वो रंग भी इतना भड़कीला चमकीला रंग ही बंगा और जकी प्लास्टिक टाइप का सा जगह कपड़ा चल रहे इब्बे कपड़ों की है के बाहर गर्मी के बगत में आपने खास रूप में बचनो है आपने जहाँ सूती कपड़ा ही भाई देखो पहनना ही थोड़ा सो ढीला डाला कपड़ा जगह के महीना आराम हो अपनो शरीर एकदम सही महसूस कर सके भी अगर ढीला डाला सूती कपड़ा पहनना ही और तावड़ियों जो जोर को पड़े भी भगत की है कि आपने मान लियो घरों बारे नहीं निकलनो है जे आपने कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम हो तो आपने मान लियो कि है कि या तो छत्तो लेके निकलना दोपहर के महीने जहाँ मान लियो 11 बजे लेकर 4 बजे जब तक को जो टेम है ने वो बड़ो तातेड़ को टेम होए और इनके मायने की है कि जी आपने घरों बारे निकलनो पड़े तो एक तो आपने सिर के ऊपर या तो तोलियो सापो है वो आपने बांध की फिर निकलनो चीजे या आपन कोई छत्तो लेगी निकड़ा पानी को जो को साधन है वो भी आपने ले की निकलनो चाहिए बारे क्योंकि बार बार में तीस लागे क्योंकि गर्मी मोगली है ना तो तीस लागे बार बार में तो पानी आपने करना होना चाहिए। खेत में आप अगर जा रहे हैं तो सुबह आप जल्दी जावा और 9 बजता या 10 बजे पहली पहली की है अपनो घर है वो पाछो पकड़ लिया बार को बगत है वो यहाँ को ही है। खाने की जी अयु भाई आप बात कराने तो भाई बार जितनी भी मान लो जिकी मसालेदार चीजा ही बन अपने एकदम तेल आई जिकी तलेड़ी चीजा ही बन एकदम अवॉइड करनी अपने की है कि एक तो जकी मैं पानी की मात्रा जिकी ज्यादा है वह चीजा को अपने सेवन करना है बिग मायने तरबूज है खरबूजो है ककड़ी है खीरा ही टमाटर ही नींबू है पुदीनो है ये चीजा की है अपने ज्यादा मान लो खानी ही बिकस आगे जी बात करा आप तो आपनो जो देसी जो खान पान है जगह के महीने मान लो छाछ है राबड़ी है दही है प्याज है बाजरे की जगह रोटी ही जगह देसी जो खान पान है वो ही अपन की है खानो है इस प्रकार की एक आप ख्यात रखांगा ने तो बहुत जरूरी है। और जे मान लो आप मान लो खेत वाणम लेट हो गया या किन्ने गाँव गाँव तेरे गेड़ा लेट हो गया किन्ने शहर सिर आप गेड़ा वहां और आप जे ऐसे महसूस करा आपने कटे भी मान लियो सांस लेने में कोई दिक्कत हो है या अपने शरीर में आप ऐसे महसूस करा अपन यहाँ लगे कि भाई तावड़ियो लाग गयो है तो फिर की है अपन लापरवाही नहीं करनी है आपने शरीर को तापमान अपने अस्पताल के महीने डॉक्टर गन जाके चेक कराना है और ध्यान है बा पूरी की है रखनी है।
0: देखो देवा भाई थे कार्यक्रम में खान पीन की जब बात करी है और भी खान पीन के मायने बाजरे की रोटी को जो जिक्र आए तो निश्चित रूप से बा अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। जे क्या करे ना के बाजरे की रोटी शू मिले ई काया ने जोर बाजरे की रोटी से मिले ई काया ने जोर सेरा रे चटकारे शू सेहत होवे कमजोर। तो थे दोनों बात तेवड़ लियो के भी मसालेदार सब्जी मसालेदार चाट और तेलीय पदार्थ से जिकी बनेड़ी चीजा है वह हमेशा अपने नुकसान पहुंचावे सेहरा को चटकारो मतलब कहने का मतलब है कि सेहरा को चटकारो वही है कि तेलीय पदार्थ ने

0: ने छोड़नो है, खाने के मायने राबड़ी है, छा है, प्याज है, और अपने एको अपा अधिक से अधिक सेवन करेगा तो अपने शरीर के मायने इतनी ताकत आ जाओगी देवा भाई का अपा गर्मी से लड़ सका, अपा सर्दी से लड़ सका, मौसम की मार अपने से हज की दूर रहे। इस वास्ते खाने के मायने अपने बाजरे की रोटी, दही, छा, राबड़ी, प्याज आंको आपा ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करा तो शरीर में पानी की भी पूर्ति हो जावे और शरीर का मायने रोगों से लड़ने की इतनी ताकत हो जावे कि भी वो ने तो गर्मी ने धारे और ने वो सर्दी ने धारे। तो खाने को अपन विशेष रूप से ध्यान रखनो है, पीने को अपन विशेष रूप से ध्यान रखनो है और सहरा के चटकारे से अपन है जिसको दूर रहनो है।
1: तो भाई कहने को मतलब है कि खान पान को और को अपन ध्यान तो रखनो ही रखनो है, भी के सगा अपनो जो को पशुधन है ने वो भी बार की है कि इया को जो को टेम है ना अपनो ई टेम में पशुधन ने की है कि उन्याला को जो को टेम है तपरी है तावड़ी और ई तावड़ी में कई की है कि देखा गावा के मैंने पशु ने खोल दे दिन में तो अपन बार की है कि अपन पशु है भी ने घर ही अपन रखनो चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो विशेष ख्यात की बार जरूरत है अपन दिन के महीने कम से कम 6-7-8 बार पानी भी अपन पूरे दिन के महीने अपन प्याणो है अपन दिखानो है और हरे चारो भी अपन है उसके तो अपने पशुओं ने की है कि गेरनो बहुत जरूरी है उसके तो आप देखा बार भी गौशाला का महीने की है कि मान लियो पुण्य करने वाला धर्म करने वाला लोग की है कि मान लियो जहाँ गौशाला में भी जाके गाया ने तरबूज खुआ है कोई खरबूज खुआ रहे है तो भी साबू आपा ने भी किए गए आपा जो आपनो पशुधन है ने बिन जिकी बार पानी की जिकी मात्रा जगह चीज में ज्यादा है ने वो किए गए बिन देनो बहुत जरूरी है। तो गर्मी हूं आपा ने हर तरह हूं आपनो भी आपने पशुधन को भी अपना नाना टाबर हिस्से को आपने किए गए बचाव है वो करनो बहुत जरूरी है। क्या ग्रह ने के बचाव ही उपाय है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी तो भाई सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। जो जोर को तावड़ो तपरियो है ने इंक मायने क्या रहने के ख्यात है बा ही अपने काम आवेगी और बगत बगत पर अपन काम दाम तो देखो करना ही पड़ेगा। अपन खेती बाड़ी को भी काम करना है, घर गृहस्थी को भी काम करना है। आ नहीं के गर्मी आ गई तो अपन हाथ पा हाथ धरकी बैठ जावा, अपन गीलो काटनो है कि भाई सुबह जल्दी अपा जो खेती बाड़ी को काम है वो सुबह जल्दी करा। खेत में आप मान लियो दिन जहाँ मान लियो अपन खेत में ही उगे ने तो इशो काम हो जाएगा भाई अपन दिन उगते के सागे खेत में पूग जावा ठंड ठंड में काम करा और फिर जू ही तावड़ी बहुत तेज हो भी हूं पहले घर आ जावा और भी के बाद में सिंजा मान लियो शाम को 5 लेकर 8 बजे तक कुछ को 3 घंटा कुछ को टेम है ने वो खेती बाड़ी के लिहाज ठीक है। बिंग महीने ठंड रहे अभी मैं आराम हूँ अपनो जो काम है वो कर सका।
0: देखो देवा भाई खेती बाड़ी की जब बात चल रही है, गृहस्थी की जब बात चल रही है तो देखो खेती बाड़ी के लिए तावड़ो और आलू अपने लिए अपने खेत के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि आप गर्मिया के महीने के मायने आप गहरी जुताई करा दें, गहरी जुताई कराने से अपनी खेती के मायने जिका नुकसान पहुंचाने आ रहा कीट पतंग है वे देखो सारा का सारा है जिका ई लुआ मैर ई तातेड़ के मायने जिका खत्म हो जाए और जब जो ही बिरखा बरस जावे बरस जगह सके आप अपनो खेत तो तैयार करेड़ो है तो आप है जिको अड़ोतियों कर दे मार अड़ोतियों देखो आप जब करा तो देखो पशु पक्षी जीव जंतु मन सबको नाम लेके आपा अड़ोतियों करा तो इंद्र देव है सबका बाप को है वो देव है। तो गर्मी और सर्दी किसान के देखो कोई ज्यादा है जिकी फर्क कौन पड़े क्योंकि मेहनत कस इंसान किसान होवे और मेहनत कस इंसान किसान होवे तो धरती को सीनो फाड़ की और धान है जिको उगा कीर जन को पेट भरे, पशुधन को पेट भरे, पशु पक्षियों को पेट भरे, जीव जंतुओं को पेट भरे तो एक किसान को ऊपर कितनी जिकी जिम्मेदारियां है बुस्से को पेट भरे ये वास्ते है। तो देवा भाई अपने देखो गर्मी को बचाव करते हुए अपनी खेती बाड़ी और पशुधन को अपने समय के ऊपर आप अगर भी को समय के ऊपर काम निपटा लेवा तो आने वाली जी की खरीफ की फसल है देवा भाई बा निश्चित रूप से अपन है जिको उपज का मायने उत्पादन अपन है बढ़ की देवगे। जब आप हाथ पा हाथ धर के बैठ गया गर्मी को मौसम है गर्मी में डर के बैठ गया तो आप अपनी खेती बाड़ी है बा कठिन कठे जिको घाटे की तरफ अपन ले जावे लाग रही है तो बखत सारू अपन सारा काम करना है जो ही अपन बिरखा बरस की होती हो अपने खेत में करनो है।
1: भाई खेती बाड़ी की बात चल रही है तो पहली की है कि आपनो जो को खेती बाड़ी को काम दाम होने भी मत ज्यादा के हो गए अपनी जिसकी शारीरिक शक्ति ने वह अपने ज्यादा लगानी पड़ती खेती के मायने क्योंकि सारा ही काम आवे ज्यादातर आप हाथों ही करता और भी मान लो अनाज की बिजाई लेगी खेत तैयार करना लेगी और भी कमाई ने ज्यादा अपनी श्रम शक्ति बा मेहनत के द्वारा लागती।

0: कमाई ने अपनी कृषि कमाई ने नवाचार देखो बात बात का आगे तो बीम की है कि अपनी खेती बाड़ी है वह बहुत ही सोरी होगी है सरल होगी है क्योंकि खेती बाड़ी के महीने आपने इतनी मशीना को जो को नवाचार हुए मशीनीकरण हुए ना खेती को भी उनकी है कि आपने लिए खेती बाड़ी बहुत आसान होगी है और नवाचार बे आपने घटन घटे खेती के महीने आपने काम भी आए ही काम बे ही आए ही कि भाई जको काम पहली एक मिनख मान लो मिनखू करता तो भी कमाई एक तो श्रम शक्ति ज्यादा लगती एक रुपया ज्यादा लगता अब की है कि जको काम मान लो 10 दिन में हो तो वो काम आप एक दिन के महीने मशीना के द्वारा कर लिया खेती बाड़ी के महीने जो नवाचार है वो होने लग रही है और जकी आपनी खेती है भी कमाई ने मशीनीकरण के सागे जकी स्मार्ट कृषि प्रौद्योगिकी को जो को विकास हुए ना स्मार्ट कमाई ने अब जे स्मार्ट खेती की जे बात करा तो खेती के महीने आपने रोबोट भी आ गया खेती के महीने आपने मान लो दवाई छिड़कने के लिए ड्रोन सिस्टम भी आ गयो खेती बाड़ी में आपने मान लो जिका नवाचार है ही तो ग्रीन हाउस आ गया पुली हाउस आ गया फिर की है सब मोटी बात है कि किसान मेहनती हुए तो वो उत्पादन तो बहुत बढ़िया कर ले फसलां बहुत बढ़िया उत्पादन करे भी कस आगे कई बार की हुए कि बाजार के मायने कई बार कोई उत्पाद की मांग कम हुए जे सब्जी की मांग कम हुए या कोई मसाला की मांग कम हुए या मान लो नाज की मांग कम हुए तो बी के लिए भी की है कि नवाचारा के रूप के मायने मान लो अब जहाँ सब्जी है तो बन रखने के लिए भी मान लो जिका कोल्ड स्टोरेज की जिकी है बे देखो एक तो आदमी निजी भी कोल्ड स्टोरेज आपका खुद का भी लगा सके है सरकार सामूहिक रूप में मान लो कोल्ड स्टोरेज की जिकी व्यवस्था करी है ना बंक महीने आपनो जो को आदान है भी ना पर रख लिया भी महीने और जब आप नहीं लगे हो भाई महीने भर बाद में भाव है बढ़िया होगा तो भी टाइम आप बेच सका हाँ तो अभी आपनी एक स्मार्ट जिकी खेती है जो को खेती के महीने नवाचार हुए है ना वो देखो किसान के किटन किटे लाभ कर रही है
1: देखो स्मार्ट खेती को रकबो है देवा भाई धीरे धीरे पर तो जा रहे जे पढ़िया लिखा किसान है पढ़ी लिखी तरीके से जे आप खेती बाड़ी करने लग गया और मशीनीकरण को साथ अपन मिलने लगे तो स्मार्ट खेती और मशीनीकरण दोनों सागे चाल की और उत्पादन है वह खूब ले लाग रहा है देखो इतो स्मार्ट पण अपने खेतीबाड़ी के मायने आ गयो कभी देसी नस्ल से आपा है जिको हाइब्रिड की तरफ ले गया और अपने जिके बेमौसम जिकी सब्जियां फल है वो उत्पादन आपा लेवे लाग गया और मोकड़े महंगे भाव के मायने आपा है जिका बेचे लागे तो स्मार्ट में तो कोई कमी कौन रही कभी जदे अपन खेती बाड़ी को काम महीना ही लाग जाया करता वह महीना चिमट की है जी का दिना का महीना आ गया तो आ स्मार्ट खेती से अपना धीरे धीरे किसान भाई है बस जुड़ता गया और ज्या ज्या जुड़ता गया बिया बिया स्मार्ट खेती अपन दिन पर दिन मोकड़ो फायदो देवे लगी और स्मार्ट खेती से जुड़नो देवा भाई अपनी मजबूरी है क्योंकि ज्या ज्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है बिया बिया जनसंख्या को पेट भरने के लिए अपने खेत की जोत है वह छोटी होगी अब जब छोटी जोत होगी तो भी जोत कमाई ने जितो आपा उत्पादन लेनो चाहवा वो उत्पादन आपा ले कुन पावा ये वास्ते भी जन को पेट है वो कुन भरे ई खातर नयो तरीको जिको खेती बाड़ी कमाई ने आपा अपना की उत्पादन लेनो शुरू करे है भी उत्पादन कमाई ने आज है आपा जिको एक 2 बीघा कमाई ने आपा 5-7-8-9-10 बीघा तक जमीन कमाई ने आपा जो क्विंटला कमाई ने धान उत्पादन है वो लेवे लाग रहा तो स्मार्ट खेती तो देखो अपने मजबूरी होगी और मजबूरी के सागे अपन काम है वो करना चाहिए स्मार्ट खेती अगर अपन नहीं अपनाता तो न तो अपने मानस को पेट भरतो न अपने पशुधन को पेट भरतो क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को दबाव सारो को सारो अपने देखो कृषक पे है किसान को ऊपर है जब किसान है जिको नए तरीके से उत्पादन लेनो शुरू करे जब जाकी जन को पेट है जिको भरे है
0: भाई आपनो जिको कृषि कमाई ने जिको नवाचार हुए ने वो नवाचार इतनी मान लो जल्दी इतो हुए है स्पीड हूं के खेती बाड़ी है बा आपनी बहुत आगे बढ़ी है और एक महीने की है कि आपनी जी की लोक कल्याणकारी जी की सरकार ही बा को बहुत मोटो योगदान है क्योंकि बे की है कि खेती बाड़ी के लिहाज भांत भांत की जी की योजनाओं चलाई ही बा योजनाओं को सीधो लाभ है वो किसान ने भी के खेत के महीने मिले हुए किसान ने भी नवाचार के महीने मान लो जितो भी मान लो नवाचार हो रही है मशीना को मशीना की है कि हाथ लेकी और मान लो आप मशीन कंप्यूटर तक चलाने वाली मशीन आई पे खेती बाड़ी की मशीन आ रही और बा मशीन को आपने पूरा लाभ मिले पी के सागे की है कि जी मान लो जलवायु की जो बात करा ना आप तो भाई आजकल की है कि

0: जलवायु प्रतिरोधी जी की कृषि है ने बी को नवाचार भी हुई है जलवायु प्रतिरोधी कृषि के मायने कई बार के आपने जो बीज की जी आप बात करा तो बीज इया का बिया का बीज है वह अपना जो कृषि वैज्ञानिक ही तैयार कर लग रहे हैं के वे मान लो जो बीज हो वो मान लो जो 45 डिग्री तापमान के मायने कोनी रहते हो बीज ने वे मान लो ई हिसाब हूँ हाइब्रिड करके तैयार कर दियो के वो 45 डिग्री तापमान ने भी आराम सहन कर सके और बी के मायने वो उपज भी बढ़िया दे सके तो एक बीज के मायने बहुत शानदार नवाचार कर दियो बी के सागे जकी जका जैविक जका जकी जैविक जकी खादा ही बे भी है कि तैयार करी ही के बे सीधी की सीधी मान लो अपना सिंचाई के सागे देश का जड़े सिंचाई को साधन होवे तो ड्रिपू भी देश का अपना फवारा के सागे भी देश का यहाँ का जोरदार जोरदार जका नवाचार ही बे अपना जका कृषि वैज्ञानिक करके किसाना ने दिए ही तो ब्यू की है कि किसान तुरंत मान लो आपकी आय है भी महीने देखो बढ़ोतरी है बा वही है
1: देखो कृषि और नवाचार दोनों आपा एक सागे ले की आपा खेती बाड़ी है जी की तेवड़ी है तेवड़ने के सागा आपा ने काफी है जी को अपनो आर्थिक स्तर है वो बढ़े है देवा भाई उपा बातचीत तो और भी करना चाह रहे हैं अपन अब मनड़ो करे है के भी जेठ चाल रहे है जेठ के मायने देखो गीत संगीत भी अगर जुड़ जावे तो देखो जेठ है वो थोड़ो गर्म हो जावे थोड़ो ठंडो है तो सुनो एक मीठी सी लोक रचना

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन

0: में मदद होती है।
1: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय

0: सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान, हमारी आवाज।
1: किसान भाइयों, आ संदेश पर छापरो कार्यक्रम में घणो घणो स्वागत है। इस संदेश हूं पहला आप सीमा मिश्रा और साथियों गाइडो मीठो सो लोकगीत सुनियो लाग्यो लाग्यो जेट। देवा भाई, अब अपना थोड़ा सा अपना कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और बात करा बचत की। अब देखो, बचत की बात आवे तो अपनो सीधो सो दिमाग जावे का पर रुपयो पीसो टक्को है, एक ही बचत करा। लेकिन एक जीवन से जुड़ी बात अपनी है, पानी।
2: हाँ बिल्कुल,
1: पानी की बचत करनो आपा कितना लोग सोचा। हाँ, और पानी की जब आपा देवा भाई बचत करेगा तो कहांगा का लावेगो, जल है तो कल है। एक टाबर हाज आपा सुनिया करता, मछली की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अब पानी की जब बात आवे देवा भाई, तो पानी की बचत के लिए आपा है जिगा कितना सोच रहा
2: भैया। यू भाई की है कि जहा पानी है ना, पानी हमेशा बचाने की बात करी गई है। अपा आज भी पानी बचाने की बात कर रहे हैं, आज 20 साल पहले भी लोग पानी बचाने की बात कर रहे हैं, और भी 50 साल पहले भी लोग पानी बचाने की बात कर रहे हैं, और भी 500 साल पहले भी लोग पानी बचाने की बात कर रहे हैं। कारण वो है सी 200 पानी बचाने को के अपा नजर पसारा और अपा देखा जो को जे अपा मोटी दृष्टि जे बात कराना है तो चारों मेर के पानी बचाने की तो कड़े जरूरत है। पानी तो कितना था, पानी है, धरती तो बहुत कम है, पानी ज्यादा है। पण यू भाई की है के जो को ज्यादा पानी है ने, वो समुद्रा को पानी है, खारो पानी है, वो न तो आपने खेती बाड़ी के काम आ रहे हो, न पशुधन के काम आ रहे हो, न आपने पीने के लिए, न कोई दैनिक काम के आ रहे है। तो पुराने भगत में भी अपना जगह लोग आबे आई कहता, देखो अपना कवि हा बे भी कहता पानी बचाने की बात करता, संदेश भी देता के रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चोन। कहने को मतलब वो है कि पानी को मोल है आपको न्यारो न्यारो है, हर चीज में पानी की महत्ता है। तो वो तो देखो गुड बात है, मान लो भावार्थ अलग अलग ही, पर कहने को मतलब है आपा बात रही पानी बचाने की कर रहे, सीधी सी बात आई है। तो भाई पानी है ने वो जो को आपने जीवन में काम लेना योग्य पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में है, मतलब बहुत ही कम को मतलब वो है कि मान लो कि बहुत ही कम है। तो भाई जो को आप ना अपनी जिकी आंखें समुन्द्र दिखे ना लोर मारता, बिया को पानी आपने जीवन कमाने काम लेने भी है कोनी, खेती बाड़ी करने लिए भी कोनी, आपने दैनिक जरूरत की चीजा के लिए भी कोनी। तो बी के लिए आपने की है के मान लो संसाधन है वो यहाँ मान लो के भी पानी सीमित ही है,
1: बिल्कुल
2: है, और जल आपने बचानो है।
1: देखो देवा भाई थे समुद्रा तक पहुंच गया और समुद्रा को पानी है वो कोई काम को कोनी, पण आपा अपने थोड़ जी की देखा का अपना आसा पास आपा ट्यूबवेल जद खोदा रखा है, बीस आपा सिंचाई कर रहे हैं, आपा उम्मीद रखा कभी ई बार आपा कुओ खुदाऊंगा अपने खेत के मायने और सिंचाई करेंगा। तो के जरूरी है का अपने खेत को पानी पीने लायक है कोनी, सिंचाई के लायक है कोनी। तो वो आपा ने गौर करनो है कि आने वाला जो समय है वो अपने टाबरा को होसी, और टाबरा खातर आपा बचत आज शुरू करा तो काल अपना टाबर है वे मुस्कान है जी की बांके चेहरे पावेगी। आज ही आपा पानी को अत्यधिक दोहन अगर आपा करे लाग रहा तो आने वाले वक्त में अपना टाबर आपा ने जिंदगी भर कोसता रहेगा का मारा बटेरा मारे खातर पानी है वो सहजो को नहीं, पानी है भी की बचत कौन करी। तो समय समय के ऊपर देखो सरकार भी आपा ने जागरूक करे लाग रही है कि बिरखा को जी को पानी है, बिन सहजने का अलग अलग तरीका है। गांव में आपा चला तो जोड़ा है, बावड़िया है, आपा शहर में आवा तो घर के मायने आपा पानी पीने योग्य जिको बिरखा को आपा भेड़ो करा। हाँ वे टंकी आपा बनावे लाग्या, टंकिया के सागे सागे आपा छोटी छोटी कुंडा है वे भी आपा बनावे लाग्या, और सरकार की योजना के तहत अपने खेत के मायने पानी की कुंडा है भी के लिए सरकार अपना सागे अनुदान के रूप में खड़ी है। आपा ने तरीको बतावा कि भी पानी है आप कुंड में भेड़ो करो, आप है जिका छात को जिको पानी शहरा के मायने आपा कुंड बनाओ और भी कमाइने भेड़ो करा नावा तो आपा पानी कम से कम इस्तेमाल करा। आज का आर्थिक युग के मायने देवा भाई से कने टू व्हीलर हो गया, थ्री व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, बिन आपा दौड़ने

0: ढोला 10 बाल्टी ढोला भी को आकलन आपा ही कर सका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कब वो एक भी के धोने के चक्कर के मायने पता नहीं कितने मानसा को हक है वो पानी के रूप में आप है जिका सड़क पर बहादियो तो इतनी सफाई भी के काम की के दूसरे को हक छीन के आपकी गाड़ी की सफाई करे लाग रहा है। तो देवा भाई पानी बचत अपने जीवन को अमूल्य दे बेन आपने कायम राख।
1: भाई यू भाई थे अभी बात करी के आप मान लो गाड़ी घोड़ा धोआ या और की करा तो बिग महीना आप पानी भावा पहली जको भगत होने भी भगत की जो बात करा ने तो बुढ़िया कह करता बताया करता बोलिया के लोटो स्नान कर लेता गे है एक बाल्टी पानी के मायने भी हुई नहा लेता भी हुई कपड़ा धो लेता जब आ बात डी अब सुना ने जद यहाँ अचंबो सो हुए है क्योंकि अब आपने जीवन के महीने आप बात तो अब कर रहे हैं जल बचत का तरीका की बात कर रहे हैं कि जल बचानो है भी के लिए के तरीको अपन काम में लेना चाहिए भी जल बच गया पर आप अयु भाई पुराने टाइम में तो जल अपन बहुत मुश्किलों मिला कर तो के जे आप लेल्ड भगत में जावा ने अपन तो फिर भी आसानी पानी मिल रही है आप मान लो कुआं तक भी गया हाँ अभी के बाद में मान लो घर सीधो अब अपने पानी आने लग रही है पर पहली तो की है के पहली सुबह मान लो लुगाया की बेचारी उठती रुबे पीसती चाक्या और भी के बाद में चाक्या पीसती कुएं पर जाके पानी सिर पर ढोकी और खेच की लाती कितो जोर मान लो पानी के लिए और आपने अब आसानी हो पानी जब मिलने लगी है ने तो आप देखो पानी को पहले तो आप बता दिया दोहन कितो कर रहा आप दिन के उठा तो पहली क्या हो गए मान लो पानी अपने मान लो दैनिक काम में कम लाग दो अब की है आप मान लो आपने घर एकदम बढ़िया सुलभ शौचालय बना रहे कहीं शानदार एक आदमी जा तो 10 लीटर पानी वो सीधो को सीधो जाए बटू पानी की शुरुआत हुए अब खूब पानी खर्च कर रहे हैं अभी के बाद में मान लो गाँव में भी क्या हो गया यू भाई पहली राख हूँ और बाड़ू रेत हूँ जिसका बर्तन मांसदार बर्तन चिमकिया करता मैं चेहरो देख लेता चाहे है इतना शानदार भी राख का मंजन लाग तो ने जब बर्तन का चमक वो करता अब की है कि गाँव तक भी अपनी जीवन शैली के महीने इतो मान लो आराम आ गयो परिवर्तन आ गयो इतना आप मान लो शहरीकरण गाँव को भी हो रही है तो बिम की है कि साबुनों मान लो बर्तन ही पे साफ करें तो बैठे साबुन जब बर्तन साफ होगा तो पानी चाहिए और पानी चाहिए जब बर्तन धोने भी खूब पानी लगे फिर आजकल आप कपड़ा धोने भी बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं पानी को कहने को मतलब दिन के आप जो ही नींद खुले जब लेके शाम को जब तक सोवा को नहीं बढ़ तक खूब पानी है वो आप काम में ले लग गया यानी अपनी दिनचर्या है पहले थोड़ी अलग होगी।
0: बिल्कुल देखो भाई थे एक बात बहुत जोर की बताई होगी रसोई के मायने जब आप बर्तन साफ कर रहे हैं पाउडर से और भी पाउडर को कोई न कोई अंश अपने पेट के मायने बर्तन के सागर जा रहे है क्योंकि सारा तो आपने उतार कौन सका क्योंकि वो चीकनो हो कठिन कठे वो अंश भी पर चिपके रहे जब आप भोजन लेवा जब आप खानो खावा तो थोड़ा बहुत अंश अपने शरीर में जाके अपने शरीर ने वो पाउडर बर्तन साफ करने को पाउडर अपने शरीर ने कितो बड़ो नुकसान है वो पहुंचावे लाग रहे
1: वो तो अयु भाई केमिकल है सीधो पेट में जा रही है सीधो प्रभावित कर रही है आपने जगह शरीर का जगह माई का अंग ने वहां पर देखो सीधो प्रभाव डाले तो कहने को मतलब वो है कि भी अभी आप जो की जीवनचर्या चली अब ई जीवनचर्या में आप बदलाव कौन कर सका अब तेज आगे घर आके दूगा के नहीं आज बर्तन तो पानी साफ नहीं करना ही था ना राख मांजना ही तो उसके थारली बात पे गौर होवे कि नहीं होवे कि इस दिनचर्या में पाछा डला कौन डला क्योंकि वो भगत लेने रह गयो तो ई वास्ते अब आपने जिकी दिनचर्या चाल दी है चालनो तो आपने भी बढ़ी पर भी आपने की है जल न बचानो है अभी के भाई जी मान लो आप सुबह उठ्या तो आप मान लो शौचालय गया तो बैठे भी आपने सीमित ही जल को उपयोग करना है कि भाई आपने शौचालय एकदम थोड़ा साफ हो जा और पानी भी बच जा वो काम हो गया भी के बाद में आप मंजन का नहीं बावड़िया तो आप मंजन कराना है आ नहीं के भाई आजकल तो किसी दी नल लाग रहे टंकी में ऊपर पानी आ रहे है और टूंटी आप खोल रहे हैं मुंह में मंजन रगड़ रहे हैं मान लो ब्रश करने लाग रहे हैं और टूंटी चालन लाग रही है तो भी वो काम अपन कौन करना है आप या तो मतलब जब जरूरत हो जब नल खोलो आ नहीं के नल चालू है मंजन करने लाग रहे हैं अभी मापा जल बचास कहाँ इके बाद में मान लो बर्तन धोवा तो बर्तन धो रहे हैं जब आप बर्तन में थोड़ा पानी लियो तो बटे की है गए बटे भी आजकल रसोईयांग महीने की है गए सीधा ऊपर टैंक मेल की और सिंक लाग रहे हैं सिंक में टूंटी लाग रही है सीधी और आप टूंटी चला लें और फिर बस बर्तन रगड़ बोग रहा पानी वो बहत जा रही है अब आप वो बेरो को नहीं कि आप आधी घंटा बर्तन धोया भी आप 100 लीटर पानी बहा दियो तो बटे आप बचत कर सकेंगे जब आपने पानी है जो ही बर्तन धोआ तो बटे आपने कम पानी में जी आपनों बर्तन भी साफ हो जाए और पानी भी कम आप खर्च हुए बा अपन ध्यान रखनी है कपड़ा धोने में भी आपने की है कि वो जो पानी वो व्यर्थ कुन करना है नाड़म आ नहीं भाई आप ना तो 10 लीटर पानी मिला अपा नालियां चलो 15 लीटर पानी अब जे आपने घर सीधो मान लियो जल जीवन मिशन के माई नल लागिए मान लियो है सरकार की योजना चल रही है जल जीवन मिशन के घर घर के माई नल पानी देंगा और वो नल आपने घर लाग गए और सीधो चलन लाग रही है आप भी नल को खोल गई बटन और भी टूटे चालू कर सीधा भी के नीचे बैठ गया अब आधी घंटा आप भी के नीचे बैठे तो आधी घंटा हम देखो देखो कितो पानी व्यर्थ चल जागो तो अपन वो काम नहीं करना अपन नलू बाल्टी भर लिया और भी बाल्टी फिर नावांगा तो अपना जल बचा सकांगा ये तो आपने दैनिक जीवन के मायने काम की बात नहीं भी के बाद में आप किसान मिनक रहा और आपने कन जे अजू भाई सिंचित खेती है ना तो आप पानी है ना बठे आपने बहुत पानी बचा सका आप देखा कि आपने जरूरत जी आप एक लाइन चला के आया तो उसके अपना किसान बहन भाई बहुत ख्यात रखे पर कई बार किसान बहन भाई भी लापरवाही कर दी कि अपन जहां लाइन चला दी खेत में गया भाई अपन सरसों के महीने लाइन चल ली है पानी अपन चालू है पानी अपन देनो है सरसों के महीने मान लो 2 घंटा एक लाइन अपनी फुहारा की चल ली 2 घंटा और अपा लाइन चला के घर आ गया आप पाछा बावड़िया को नहीं आप जा रहे 3 घंटा बाद में या 3.5 घंटा बाद में तो वो जल है वो व्यर्थ गयो। अब कई बार की है आपने चूरू क्षेत्र की बात कराना पा तो अटैक की है आपने पानी के महीने हालांकि बहुत तकड़ो मीठो पानी को नहीं आपने लेकिन वो काम में लेना योग्य सु है लेकिन भी फ्लोराइड की मात्रा भी है खनिज लवण भी ही वो पानी आपा अपनी फसल में ज्यादा दे देंगा तो फसल ज्यादा होने की बजाय कम होगी खेत की माटी एवं खराब होगी। दूसरी बात आपने जल को दोहन होने लग रही है तो आप खेती बाड़ी के मायने भी जी सिंचाई कराने भी के मायने फवारा आप चला रहे हैं तो टाइमिंग है कि भाई आपने 1 घंटा पानी देना तो भी 1 घंटा को पूरा ध्यान रखा कि भाई आलो 1 घंटा होगी 60 मिनट होता है 120 मिनट आप दूसरी लाइन चला दें वो ध्यान रखा भी के सागे की है कि आपना जी पाइप लाइन ही और ही नल ही जो भी टपकता हुए अब हम रिसाव होते हुए तो भी को भी अपन की है कि पूरो ध्यान है वो अपने राखनो चाहिए जल ना अपने व्यर्थ है वो बहानो नहीं है।
0: देखो गर्मिया के मौसम का मायने जब आप पानी की बचत की आप बात करा तो आपने गांव की जिकी गृहणियां है वह आपके मोटा के ऊपर पानी लिया की पानी पीने की पूर्ति कराया करती वो भी बखत देखो आज आपने देखने मिला लाग रहे देवा भाई के मायने गर्मिया के मायने मौसम के मायने पानी की जितनी महत्ता है चाहे वो मानस हो चाहे वो अपनो पशुधन हो चाहे अपना छोटा सा पक्षी हो चाहे जीव जंतु हो पानी की जरूरत सबने पड़े और बचत को महत्व जदि अपना ने महसूस होवे कि गर्मिया के महीने के मायने अपना पानी की बचत कर लिया तो और भी ज्यादा अपने है जिको बढ़िया लगे कि गर्मिया के मौसम के मायने पानी है वो एक अमूल्य है। सर्दिया में फिर भी आप पानी की अपने शरीर ने कम जरूरत हो अपने पशुधन ने कम जरूरत हो नहाने की कम जरूरत हो कपड़ा धोने की कम जरूरत हो बर्तना के ऊपर जितो पानी है वो भी कम जरूरत हो क्योंकि ठंडो पानी आसी तो आपा ही कैसे कि नहीं सर्दी का मौसम है थोड़ो ठंड से बचाव करो ये बापा कह रहे हैं कि गर्मी को मौसम है पानी की बचत है वा करो तो देखो देवा भाई बचत है वा जद ही सार्थक हो जब आप अपने से शुरू करा और आप अपने गांव में गली में बास में मोहल्ले में अपने ढाणी के मायने की शुरुआत जब लगातार चलती रहे जब जाके अपनी चर्चा को सार्थक जद आप मानी जावे कि जब आप बचत है वह अपने से शुरू करके अपने गांव गांव ढाणी ढाणी तक की बात पर अमल करो जावे कभी पानी बचत अपने जीवन को हिस्सो है और ए हिस्से ने बचानो अपने लिए बहुत ही जरूरी है।
1: भाई देखो पानी बचाने की बात आप भी कर रहे हैं अपनी सरकार भी कर रही है और बगत बगत पर सारो काम हो भी है तो भी पानी है वो बहुत ही एक रतन है पानी तो अपन पानी ने व्यर्थ बाणो नहीं है क्योंकि आप की है कि भाई बिना दूध के रह सका
0: बिना पानी के कौन रह सका
1: तो पानी बहुत मोटी जरूरत है। एक बात रही और कहना चाहूंगा कि पानी बचानो भी है पण आपने जका बार की है के बार के बगत के महीने जका मान लो आ गर्मी इतनी जोर की पड़न लाग रही है के आज भी तापमान है बुइयों को तपन लाग रही और लुआ चले बहुत जोर की मान लुआ के महीने आपने टेढ़े गेड़े आपने नजदीक जका निरी पशु ही जका बेसहारा पशु ही चाहे बे मान लो अपना जका पशु हो चाहे जंगली पशु हो चाहे जीव जंतु बंक के लिए भी अपन थोड़ी बहुत पानी की व्यवस्था है बात जरूर करनी है।
0: देखो पंछी डूब क्या छाव में छाया ढूंढे ढोर देखो हर मानस हर पशु हर पक्षी है वो अजी को छाया को इंतजार है
1: बिल्कुल
0: वो कर रहे है अंबर उगड़तो आंगन जेठ मचायो शोर। अब देखो जेठ है देवा भाई तो जेठ तो जेठ ही होवे, वो बड़ा बड़ा ने जिका कुंटा कड़ा देवे।
1: बिल्कुल,
0: तो जेठ को अपन विशेष रूप से ध्यान रखना, पानी बचत करनी है। आप बातचीत तो अपने तालवा से देवा भाई और भी करेंगे, एक बार ले चला अपने गणेश वंदना की तरफ।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अभी आपां ए संदेश सुनिया और संदेश हूं पहली आपां एक सांतरी सी गणेश जी महाराज की वंदना है बा सुनी, और जकी गणेश वंदना है बिन गाण वाला मांगीलाल कथक और बांगा साथिया, बहुत ही शानदार जकी गणेश वंदना है आप सुनी। और किसान बहन भाई अभी के आप बात रही अयु भाई कर रहा खेती कमाई ने नवाचार की, और बे नवाचार के है गए आपना जगह कृषि महकमे का जगह वैज्ञानिक की बे भी करे, और बांके सागे आपनी सरकार है बाबा ने भगत भगत के ऊपर की है के बने सहयोग करती रहे, और भगत भगत पर ये की परिचर्चा ही यहाँ का जगह राष्ट्रीय जी की सेमिनार ही कॉन्फ्रेंस ही बे होती रहे। तो भी मैं जी मान लो अभी एक आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस है बा एग्रीकल्चर खरीफ कैंपेन 2026 अब आयोजित हो सी आपने जी की 2026 का महीना 28 और 29 महीने हो सी बीक महीना आपना जिका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता का महीने बा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय विभाग और कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा बा खरीफ अभियान जो 2000 अब आगे आपने जिकी खरीफ की आने वाली फसल ही बांक के ऊपर आज की राष्ट्रीय जो को सम्मेलन है वो आयोजित हो सी। सम्मेलन की डेट तो अभी आपने बताई है 28 और 29 महीना और ऐसी और एनएससी कॉम्प्लेक्स पूसा नई दिल्ली का महीना वो आयोजित होने लग रही है। तो इस सम्मेलन को जो उद्घाटन है वो आपना जगह कृषि किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान बे कृषि और बांके सागे आपना राज्य का जगह कृषि मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, ICAR है, राज्य का केंद्र शासित जगह प्रदेश ही बांक का जगह वरिष्ठ अधिकारी बे भी इस सेमिनार के महीने की है उपस्थित रहसी, हाँ बड़े मौजूद रहसी, और बांक सागे जो की खरीफ फसलों के बारे के महीने की नवाचार करनो है बांक ऊपर होसी, जो की जो मान लो राष्ट्रीय जो की खरीफ अभियान 2026 है ई पर वो सम्मेलन है वो आधारित है, और वो दो दिवसीय जो राष्ट्रीय सम्मेलन है इको उद्देश्य भी अयु भाई वही है कि आने वाली अपनी जगह खरीफ मौसम की जगह फसल है बी के ऊपर कोई रणनीति बनाई जासी, विचार विमर्श करी जासी के बी के महीने अपनी खेती बाड़ी है, बी के महीने उत्पादकता के महीने क्या वृद्धि करे जा सके है, जो को जलवायु परिवर्तन हो रही है बी मान लो निपट की अपनी खेती बाड़ी के महीने क्या लाभ कमाई जा सके है, बुनियादी ढांचो है अपनी खेती को बी ने क्या मजबूत करे जा सके है, किसाना की जिकी समृद्धि है किसान खुशहाल किया हुए सरकार आ चिंता करी है बी के ऊपर भी बातचीत है एक महीने ओसी, और वो सम्मेलन आप लोग को केंद्र सरकार है राज्य सरकार है ICAR ही कृषि संस्थान ही बांका जका भी मान लो वरिष्ठ अधिकारी ही बे खरीफ के मौसम की जकी भी प्रमुख जकी प्राथमिकता हुए बांके ऊपर समन्वित पूरी मान लो कार्रवाई की चर्चा है बाई के ऊपर करेगा, और बी के महीने की एक चर्चा के महीने मुख्य जकी बात है बाई के इर्द गिर्द रहेगी के भाई खेती में आत्मनिर्भरता है बाकियां बनी रह सके, खेती को विविधीकरण है बीक महीने उत्पादन की जिकी वृद्धि है बाद को किया बढ़ सके है अपनी जिकी सतत विकास है खेती को, बीक महीना मान लो जिकी जलवायु है बीक महीना अपनी लचीली कृषि है बापा मान लो भी खेती ने क्या मजबूत है बा कृषि का खेती की अवसंरचना है बिम वित्त पोषण भी होए बी को मान लो खेती में के जोखिम प्रबंधन होए बा के सगला के ऊपर की है गई की चर्चा है बा करी जाएगी।
2: तो देखो अब बहुत बड़ी जिकी प्लान है सरकार को कि भी खेतीबाड़ी के ना आपा बढ़ाओ देवा वो के बढ़ाओ देवा, तो सारे राज्य का कृषि मंत्री और कृषि विभाग और बड़ा बड़ा वैज्ञानिक और केंद्रीय कृषि मंत्रिमंडल का कृषि महकमा ए सारा का सारा भेड़ा हो की और नई तकनीक खरीफ है जिकी में आपा ज्यादा उत्पादन है वो किया ले यार। देखो कार्यक्रम में आपा बात भी करी के मौसम परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया को ही हो रहे, तो बदलता जलवायु परिवर्तन के ऊपर अपना वैज्ञानिक अपन के राय देवे भी राय के अनुसार आपा है जगह खेती बाड़ी है बापा करा। अब देखो देवा भाई आपा खूब सारी अपने इतालुआ सा बतलावन भी कर ली, बातचीत करी, गीत संगीत सुनाया। अब चलता चलता एक और मीठो सो लोक गीत अपने इतालुआ सुनाना चाहो, आप भी सुनो और मैं भी सुना।

0: किसान भाई अभी आपने सीमा मिश्रा गायडो मीठो सो लोकगीत सुने और लोकगीत के साथ ही अपनो कार्यक्रम खेती और गृहस्थी अठे तक अयुब खान गोड़
1: और भाई देवन देव सीख करा राम राम।

फिल्म संगीत का आगाज करते हैं बहार आने तक फिल्म के संगीत के साथ पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। गीत लिखे हैं इब्राहिम अस्त ने और संगीत है राजेश।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: श्रोता, इसमें सुन रहे हैं फिल्म संगीत में गुलजस्ता और आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के गाए रंग फिल्म के इस गीत को। शब्द लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: आप सुन रहे हैं विनोद राठौड़, अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज में मृत्युदाता फिल्म के इस गीत को। शब्द रचना है समीर की और संगीत है आनंद मिलंद का।

आप सुन रहे हैं समीर के लिखे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पद किए हुए आजाद देश के गुलाम फिल्म के संगीत को। आवाज है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की।

आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण की आवाज में दस्तक फिल्म के इस गीत को। शब्द लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है राजेश रोशन का।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत और आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू की आवाज में शिकारी फिल्म के इस गीत को। संगीत है आदेश श्रीवास्तव का और शब्द रचना है।

कुमार सानू के गाए शिकारी फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत में गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। से कुछ देर में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे आप सुन पाएंगे न्यूज़ @9। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक

0: धार्मिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश वासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी

22% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

चंपा मिथि और साथियों के गए इस लोक रचना के साथ ही आज का राजस्थानी लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है। कार्यक्रम की

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के

0: होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहाँ पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो अब हिंदू वहाँ पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहाँ पे रहेंगे। परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था। वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहाँ पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 300,000 बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है।

0: कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: भारत सरकार ने एक तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
3: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गए, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए CA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। तो पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम एक गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा, और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है, और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
5: देखिये, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिन्ड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा, कुछ सुझाव

0: रिपोर्ट बोले साहब ने अपने कमेटी के रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे वोट बोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इस पे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस कीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए, और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहाँ बसाएं या जहाँ भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, वो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो, तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
2: देखिए आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
1: जी
2: 1983 में जो IMDT एक्ट बना जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है शायद ठीक बता रहा हूँ, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोली कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेन उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर, लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई स्थानिक संस्कृति लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, द डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the challenge continues, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
2: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य एक केंद्र पर की ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपीज को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं एक क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी इसकी क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले, डिटेक डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ, बिल्कुल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
4: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है। कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
0: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इनका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं। इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
2: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है। ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
5: चर्चा का विषय है।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, FM 107 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं बांसुरी वादन राग जैत में। कलाकार हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। कलाकार थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। आप सुन रहे थे बांसुरी वादन राग जैत में FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत कलाकार थे जगजीत सिंह और साथी FM 107.7 MHz पर आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।